FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क

0: क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। कार्यक्रम में सबसे पहले वंदन देश का समूह स्वरों में।

समूह स्वरों में अभी हमने सुनी देश वंदना। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये गीत।

0: देवकी पंडित और साथियों के गाए इस कृष्ण भजन के साथ ही कार्यक्रम आराधना आप यहीं समाप्त होती है। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम खेती की बात का। आज का समसामयिक सुझाव है गेंदा फूल की उन्नत खेती विषय पर। वाचन स्वर है त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय के।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। आजकल फूल के जो खेती करत थे वह संगवारी मन बहुत बढ़िया आमदनी कमा थे और खेती बाड़ी के संग में फूल के खेती एक अक्तिहा आमदनी के

0: साधन बन गए हैं। काबर के संगवारी हो, आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में फूल के प्रयोग, चाहे घर में कोनो उत्सव है, शादी है, विवाह है, छठी है, छिवारी है, पूजा है, पाठ है, भागवत है, चाहे कथा है और चाहे मरनी हरनी है, जम्मो जिनिस में फूल के प्रयोग हो रहे हैं। तो हमारे संगवारी मन हाँ फूल के खेती करके बढ़िया आमदनी कमा सकते हैं। फूल में बात करी गेंदा फूल के, तो गेंदा में उन्नत किस्म है अफ्रीकन, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता, अर्का अग्नि, अर्का बंगारा, पंजाब गेंदा, कलकतिया गेंदा, फ्रेंच, छत्तीसगढ़ गेंदा, एक पूसा दीप, चंदेनिन, पूसा अर्पिता, अर्का भानु, अर्का शुभ्रा, अर्का विभा। गेंदा फूल के खेती पर खेत के चुनाव के जहां तक बात है, तब लोई दोमट माटी जेमा जल निथार के बढ़िया प्रबंध होए, जीवाश्म युक्त रहे, ये गेंदा के फसल पर बढ़िया माने जाते हैं। बीज के मात्रा के जहां तक बात है, तो प्रति हेक्टर 1.5 ले 2.0 किलोग्राम लगते, इला कटिंग लेघला लगाए जा सक। संगवारी हो, नर्सरी में बीजा बोए के पहली बीजा ला उपचारित करना बहुत जरूरी होते। बीजोपचार बर 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज डायथेन M45 नामक फफूंद नाशक दवा ले उपचार कर लेना चाहिए। पौधा ला लगाए बर पंक्ति ले पंक्ति के दूरी 45 ले 60 सेंटीमीटर अफ्रीकन गेंदा बर और फ्रेंच बर 30 सेंटीमीटर, पौधा ले पौधा की दूरी 30 ले 45 सेंटीमीटर अफ्रीकन बर और फ्रेंच बर 30 सेंटीमीटर। कंपोस्ट की मात्रा 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, खातू माटी की जरूरत जो है प्रति किलोग्राम, उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नत्रजन 120 ले 150 किलो, स्फुर 800 ले स्फुर 80 ले 100 किलो, पोटास 60 ले 80 किलो। रोपाई के बाद गेंदा के फसल में शुरू शुरू में 30 ले 45 दिन में फसल के बढ़वार बहुत बढ़िया ढंग ले होते। ये 30 ले 45 दिन बहुत अच्छा होते गेंदा के फसल पर। यही अवधि में खरपतवार मन घलो बहुत जल्दी जल्दी बाढ़ते। 25 ले 30 दिन बाद फसल छोटे रहे तभी पानी दे के जैसे ही बतर आवे निंदाई गुड़ाई के काम ला बढ़िया ढंग ले कर लेना चाहिए। एकर बर शुरू के 45 दिन में 2 पैत गुड़ाई के काम जरूर कर लेना चाहिए, तेखर बाद गुड़ाई के जरूरत नहीं पड़े। पल्लो पासी की बात करी तो 7 ले 9 सिंचाई की आवश्यकता पड़ते। उपज के जहां तक बात है, तो प्रति हेक्टेयर 120 ले 180 कुंटल अफ्रीकन और 80 ले 100 फ्रेंच। ये तो रही से गेंदा फूल के खेती। राम राम, जय जोहार।
1: गेंदा फूल की उन्नत खेती विषय पर त्रिलोकी सिंह छत्री के वाचन स्वर में हमने सुनी खेती की बात। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई को यानी कि आज स्टूडियो में जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर के अतिरिक्त उप संचालक विशेषज्ञ डॉक्टर राम ओत्तलवार उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा शुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बकरियों में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का STD कोड 07752 अवश्य लगाएं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आज यानी 28 मई और 29 मई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हो रहे हैं।

0: रहे हैं।
1: वक्त है श्री रामचरित मानस गान का, स्वर है रविंद्र साठे और साथियों के, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।
2: एपिसोड 93 93

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नमाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

0: अभी हम सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर रहे रविंद्र साठे के और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम चिंतन का। आज हम सुनेंगे श्री डी के एस ठाकुर के आलेख सार्थक भूमिका को।
1: की घटना का संदर्भ है। सेवाश्रम शेगांव में हो रही साफ सफाई के दौरान एक स्वयं सेवक के हाथों से पुराने दीपकों से भरी एक टोकरी छूटकर फर्श पर गिरी और माटी के दीपक टूट फूट कर बिखर गए। आश्रम के नियमानुसार कर्तव्य में हुए प्रमाद या लापरवाही के कारण हुई हानि की सूचना स्वयं सेवक ने खुद महात्मा गांधी को दी और पश्चाताप से सिर झुकाकर खड़ा रहा। भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की स्नेह भरी नसीहत और निर्देश देकर गांधी जी ने उसे विदा किया। बाजार से नए दीपक खरीद कर लाते समय उसी स्वयं सेवक से दुर्योगवश टोकरी गिरी और पथरीली जमीन से टकराकर बहुत से दीपक फूट गए। जानकारी दिए जाने पर महात्मा गांधी के चेहरे पर आत्मिक वेदना की एक छाया छलक गई, किंतु वे मौन रहे। स्वयं सेवक द्वारा टूटे फूटे दीपकों की कीमत चुका देने के विनम्र प्रस्ताव को अमान्य करते हुए गांधी जी ने अपने लिए 2 दिनों के उपवास की घोषणा कर दी। वो स्वयं सेवक ही नहीं, समस्त आश्रमवासी मर्माहत हो उठे। स्वयं सेवक की असावधानी के लिए गांधी जी ने स्वयं को जिम्मेदार माना। नुकसान को आश्रम में दिए गए अधूरे प्रशिक्षण का दुखदायी नतीजा बताते हुए खुद के लिए प्रायश्चित स्वरूप उपवास का विधान किया। अपराध बोध से ग्रस्त और दुखी स्वयं सेवक के मन को एक जिज्ञासा मत रही थी कि पुराने दीपकों के फूटने पर महात्मा गांधी ने कुछ नहीं कहा, किंतु नए दीपकों के फूटने पर 2 दिनों का उपवास किया। नए पुराने दोनों ही प्रकार के दीपक मिट्टी के थे। नष्ट हुए नए दीपकों का मूल्य चुका देने की भी पेशकश की गई। स्वयं सेवक के लिए ये अनबूझी पहली थी। एक दिन समय पाकर जिज्ञासु स्वयं सेवक ने अपनी दुविधा महात्मा गांधी के सामने ही रख दी। गांधी जी ने समझाते हुए कहा, महत्व न तो दीपकों के नए पुरानेपन का है और न पैसे से चुकाए गए उनके मूल्य का ही है। महत्व या मूल्य दीपक की भूमिका का है। पुराने दीपक अपनी भूमिका निभा चुके थे। एक बार या अनेक बार जलते हुए प्रकाश फैलाकर अपनी सार्थकता में धन्य हो गए थे। वे अपनी कर्म धर्ममयी भूमिका अदा कर संसार को अपना उत्कृष्टतम दान अर्थात प्रकाश दे चुके थे। दुख और वेदना तो बेचारे उन नए दीपकों के लिए है जिन्हें अपनी सार्थक भूमिका निभानी थी। एक या अनेक आवृत्तियों में आलोक बिखेरना था और यथाशक्ति अंधेरे से लड़ना था। नए दीपक असमय ही काल कवलित हो गए। कर्म और धर्म के रंगमंच पर पदार्पण करने ही वाले थे कि उन्हें विदा कर दिया गया। क्षमता पात्रता और ऊर्जा होने पर भी एक छोटी सी असावधानी ने उन्हें वंचित कर दिया। गांधी जी की पीड़ा इसी बात को लेकर थी। अकृत कार्य नए दीपकों का करुण अवसान। धर्मशास्त्र दीपक को सूर्य और अग्नि का संयुक्त वारिस घोषित करते हैं। उसे कर्म साक्षी भी माना गया है। सूर्यास्त के बाद रात्रि के अंधकार में आलोक वर्षा करते रहने का पुरुषार्थ और धर्म से ही निभाना है। इस द्वंद्वात्मक में प्रकाश और अंधकार दोनों का चिरंतन सह अस्तित्व है। जनश्रुति है कि अंधकार और प्रकाश में हमेशा युद्ध होता रहता है, किंतु ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां दोनों एक साथ रह सकें। तब युद्ध होगा कैसे? एक ही विद्यमानता दूसरे की अनुपस्थिति या अभाव का परिणाम भी है और प्रमाण भी। अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, केवल हटाया जा सकता है। प्रकाश की परिधि बढ़ेगी, घेरा बढ़ेगा, अंधकार अपने आप सिमटता सिकुड़ता चला जाएगा। अंधकार के घनत्व या विस्तार से आज तक कोई दीपक नहीं बुझा। दीप जब भी बुझे हैं स्नेह अर्थात तेल के अभाव में बुझे हैं अथवा संरक्षण के अभाव में बुझे हैं। मनुष्य भी एक जलते

0: वे दीपक के समान है। यदि उसे भरपूर स्नेह मिलता रहे, संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता रहे, तो कोई आघात उसे नहीं तोड़ सकता। भारतीय संस्कृति आलोक धर्मी रही है। वेद के संज्ञान सूक्त का निर्देश है, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर बढ़े चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, गौतम बुद्ध तो मनुष्य को अपना दीपक स्वयं बनने का उपदेश देते हैं। आत्मदीपो भव।
1: श्री DKS ठाकुर के आलेख सार्थक भूमिका को अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

आज सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। आपकी पसंद इस फरमाइशी कार्यक्रम को सुनिएगा सुबह 10 बजे और इसके बाद सुनिएगा कार्यक्रम नए तराने सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय होगा सुबह 11 बजे। संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे दोपहर 4 बजे।

महिला सभा हम लेकर आएंगे शाम 5:35 पर, जिसमें सामूहिक चर्चा होगी गर्मी में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक पेय और स्वास्थ्य विषय पर। साथ ही सुनिएगा गर्मी में माँ का स्वास्थ्य और शिशु की सुरक्षा विषय पर वार्ता। शाम 6:20 और शाम 7 सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने

शाम 7:20 पर सुनिएगा ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ में हम लेकर आएंगे कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था विषय पर चर्चा। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी होगी शाम 7:30 पर। इसमें हम सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज की बात होगी मछली पालन हेतु सरकारी योजनाएं विषय पर। साथ ही सुनिएगा शुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपाय पर। बिलासपुर जिला के अतिरिक्त उपसंचालक डॉक्टर राम उत्तलवार से श्रोताओं के फोन पर पूछे गए सवालों के जवाब। संचालन होगा नंदू भैया का। साथ ही जानकारी होगी मंडी और मौसम की। रात्रि 8 बजे सुनिएगा श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों का कार्यक्रम चिट्ठी मिली। रात्रि 8:20 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वच्छ भारत अभियानं

0: सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। वक्त है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का।

0: आज सुबह
1: कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को अंशुल गुलकरी का प्यार भरा नमस्कार।

किसी ने सच ही कहा है कि एक पुरुष को शिक्षित एवं स्वस्थ बनाने से आप केवल एक व्यक्ति को समृद्ध बनाते हैं, लेकिन एक महिला को स्वस्थ और सशक्त बनाने से पूरा परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाती है। आज 28 मई है, दुनिया भर में आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, महिला स्वास्थ्य सिर्फ एक चिकित्सा का विषय नहीं बल्कि हमारे समाज की बुनियाद है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1987 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति समाज को जागरूक करना है। अक्सर देखा गया है कि हमारे परिवारों में महिलाएं सबका ख्याल रखती है, बच्चों की पढ़ाई हो, बुजुर्ग की दवाई हो या रसोई का स्वाद, उनकी हर नजर पर होती है। लेकिन अगर कुछ छूट जाता है तो वह है खुद उनका अपना स्वास्थ्य। सबकी सेहत का जो रखती है ख्याल, वक्त आ गया है कि पूछे कोई उसका भी हाल। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओं, इस गीत से पहले हम बातें कर रहे थे महिलाओं और उनके स्वास्थ्य की। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, जब हम महिला स्वास्थ्य की बातें करते हैं तो इसमें उनके जीवन के कई पड़ाव शामिल होते हैं। किशोरावस्था में पोषण की कमी या एनीमिया, गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल और ढलती उम्र में मेनोपॉज के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव। हमारी सरकार ने जननी सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत जैसे कई सुंदर योजनाएं बनाई हैं ताकि हर बहन बेटी तक अच्छी चिकित्सा सुविधा पहुंच सके। लेकिन एक छोटा सा आग्रह मेरा आप सभी से है, सरकार अपना काम कर रही है, पर क्या हम अपने घरों में एक ऐसा आत्मीय माहौल नहीं बना सकते जहां घर की महिलाएं बिना किसी संकोच के अपनी बीमारी या तकलीफ हमसे साझा कर सके? आइए उनसे रोज प्यार से पूछें कि आप कैसी हैं, क्योंकि जब हमारे घर की नींव यानी हमारी महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी तो हमारा पूरा परिवार मुस्कुराएगा। और प्यारे श्रोताओं, हमारी इन अपनों की सेहत और मुस्कान की शुरुआत तभी हो सकती है जब उन्हें सही समय पर पूरा और पौष्टिक भोजन मिले। पोषण की यही बुनियादी जरूरत हमें आज के दूसरे सबसे बड़े विषय की तरफ ले जाती है, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं बिलासपुर और उसके आसपास होने वाली यातायात संबंधित गतिविधि के बारे में ट्रैफिक अपडेट में।
1: नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है यातायात संबंधी हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बलिदान, त्याग, समर्पण तथा आपसी भाईचारे का मुस्लिम पर्व ईद उल अजहा आज सर्वत्र हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी को बधाई। इस अवसर पर

0: बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई प्रातः 7 बजे विभिन्न मस्जिदों में तथा प्रातः 8 बजे ईदगाह में नमाज अदा करेंगे। इसके बाद सभी कब्रिस्तान पहुंचकर अपने परिवारजनों के दिवंगत सदस्यों के लिए दुआएं करेंगे। इस आयोजन के कारण प्रायः सभी मस्जिदों एवं ईदगाह के आसपास लोगों की बड़ी संख्या होगी। यद्यपि इस दौरान सुगम के साथ साथ सुरक्षित यातायात हेतु यातायात का बल सुबह से ही तैनात है, फिर भी आम लोगों से अनुरोध है इस समय यहां से गुजरते समय अपने वाहनों की गति कम से कम रखें, धीरे चलें, सुरक्षित चलें। बिलासपुर शहर के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पर्व को लेकर काफी चहल पहल है। सड़कों में पूरी सतर्कता के साथ चलें। इसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, वर्षा ऋतु आने ही वाली है। लोग वर्षा के प्रारंभ होने के पूर्व अपने नए घर का निर्माण या पुराने घर की मरम्मत में जोर शोर से लगे हैं, ताकि पानी गिरने के पूर्व काम पूरा हो जाए। यहां तक की सोच तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ यह भी देखा जा रहा है लोग अपने घरों के सामने सार्वजनिक सड़क गलियों में भवन निर्माण सामग्री जैसे ईंट रेत गिट्टी मुरूम छण आदि लंबे समय के लिए रख देते हैं, जिससे ये रेत गिट्टी आदि सड़क या गलियों में बिखर जाती है। इससे सड़कें संकीर्ण होती हैं, रेत गिट्टी मुरूम आदि से दो पहिया वाहन फिसलते हैं, लोग गिरते हैं, छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। साथ ही आम यातायात भी बाधित होता है, लोग परेशान होते हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लेवें। सार्वजनिक मार्ग में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना विधि और मानवता दोनों के विरुद्ध है, ऐसा कभी न करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ट्रैफिक अपडेट से पहले हम बातें कर रहे थे एक और बड़े दिन की, जिसे आज के दिन मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस। जी हां श्रोताओं, आज दुनिया भर में वर्ल्ड हंगर डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद किसी को दोष देना नहीं, बल्कि हम सबको ये याद दिलाना है कि आज भी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती। कई मासूम बच्चे आज भी कुपोषण का सामना कर रहे हैं। हमारी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से करोड़ों भाई बहनों तक अनाज पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। देश के किसान भी दिन रात खेतों में पसीना बहाकर हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। ऐसे में मेरा आप सभी से एक बहुत ही छोटा और विनम्र निवेदन है। हम अक्सर शादियों पार्टियों या कभी कभी घरों में भी अनजाने में थोड़ा बहुत भोजन बर्बाद कर देते हैं। अगर हम सब मिलकर बस इतना सा प्रयास करें कि हमारी थाली में अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो, तो शायद हम किसी भूखे पेट की कद्र कर पाएंगे। अपनी खुशियों के मौकों पर अगर हम किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद कर सके तो इस दिन की सार्थकता और बढ़ जाएगी। तो श्रोताओं, आज 28 मई के इस विशेष अवसर पर आइए हम सब मिलकर बहुत ही प्यार से ये संकल्प ले कि हम अपने घर की महिलाओं के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ अन्न को ईश्वर का प्रसाद मानकर उसकी बर्बादी को रोकने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। जब हर हाथ को भोजन मिलेगा और हर महिला का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा, तभी हमारा समाज और हमारा देश सही मायनों में समृद्ध बनेगा। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं इस गीत को।
2: अरे आइए आइए आइए आइए मेहरबान कदरदान दोस्तान भाईजान श्रीमान पहलवान। अरे हमने ये माना ये महंगा जमाना है, तन को तो ढकना है लाज तो बचाना है।
3: अरे दादा हो दादी हो नाना हो नानी हो, वो घर का मालिक हो या घर

0: है इज्जत लिबास की।
1: अजी पूछो ये सेठों से, पूछो ये लीडर से, कितने ऐप छुपते हैं रेशम से खद्दर से।
0: भाई कह गए पंडित ज्ञानी ध्यानी के कपड़े सफेद हों। हाँ भाई हाँ, ओ कपड़े सफेद हों, मन चाहे काला हो, अंदर अंधेरा पर बाहर उजाला हो।
1: इसलिए अजी इसलिए तो कहते हैं।

श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई यानी कि आज स्टूडियो में जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर के अतिरिक्त उप संचालक विशेषज्ञ डॉक्टर राम ओतलवार उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा शुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बकरियों में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम के

उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2-6-6-5-9-2। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 मई यानी कि आज और 29 मई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, अब चलते हैं कार्यक्रम आज सुबह की ओर। श्रोताओं, जब तक हमारे समाज में कोई एक भी व्यक्ति भूखा सो रहा है, तब तक हमारा विकास अधूरा है। तो आज 28 मई के इस बेहद विशेष और संवेदनशील अवसर पर, जब हम अपने रेडियो सेट के पास बैठकर इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, तो आइए अपने व्यस्त जीवन से चंद लम्हे निकालकर एक गहरा संकल्प ले। ये संकल्प किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए है। आइए आज बहुत ही सम्मान और आदर के साथ ये प्रण ले कि हम अपने घरों की महिलाओं, अपनी माताओं, बहनों और बेटियों की सेहत और उनकी खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जरूरत का सम्मान करेंगे और इसके साथ ही अन्न को ईश्वर का प्रसाद मानते हुए अपनी थाली में उसका एक भी दाना व्यर्थ नहीं होने देंगे। श्रोताओं, जब देश की हर नारी पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित होगी और हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोएगा, तभी हमारा ये देश, हमारा ये समाज सही मायनों में समृद्ध, आत्मनिर्भर और खुशहाल कहलाएगा। श्रोताओं, आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी और अप्रतिम विचारक विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती भी है, जिन्हें देश आदर से वीर सावरकर कहता है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में जन्मे सावरकर का पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा और क्रांति के लिए समर्पित रहा। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक प्रखर लेखक, कवि, समाज सुधारक और अद्वितीय इतिहासकार भी थे। छात्र जीवन में ही उन्होंने कई संगठनों की स्थापना कर युवाओं में देशभक्ति की अलख जगाई। वीर सावरकर जी के त्याग, तपस्या और अदम्य साहस को आकाशवाणी का शत शत नमन। श्रोताओं, आप सभी आदरणीय ने आज अपना बेहद कीमती समय इस विशेष प्रस्तुति को दिया, इसके लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखते रहें। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी आपने इस दोस्त को सुना, दीजिए अंशुल गुलकरी को इजाजत। कार्यक्रम आज सुबह से, नमस्कार।

0: आज सुबह
1: कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे का पहला गीत है फिल्म चांदनी से। आवाज सुरेश वाडकर की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत शिव हरि का है।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अभी हमने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में चांदनी फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में जावेद अख्तर के लिखे हुए गीत को, जिसे संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और फिल्म का नाम है सागर।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आइए अब सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत से सजा हुआ आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है शक्ति।

कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। इंदिवर की शब्द रचना है और संगीत राजेश रोशन का। फिल्म खून भरी मांग।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है नसीब। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों में गाए नसीब फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जुड़ने का और सुनने का समाचार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में

0: धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके

0: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराव और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाश भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का

0: तीसरा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली, रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रूपीज। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond

कार्यक्रम माटी के स्वर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कीजिए स्वीकार अंशुल गुलकरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम माटी के स्वर का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदु, लालपुर से लुकेश यदु और समीर यदु, खमरिया से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा सुहद्रा आयुषी और कृत वर्मा, शिवाजी चौक राजेम से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार रोशन बंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा दिव्यांश और लभी श्रीवास्तव, भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारणी सूरज सुजला ज्योति रेयांश ठाकुर, भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल मोतीलाल यादव बसंत भृगु विनय ठाकुर चोवाराम वर्मा सूरज बारेकर नारायण यदु लेखराम राधेश्याम जितेंद्र साहू भुवन का

भामरी, मारवाड़ी कुआं भाटापारा से सियाराम और अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी और अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ, हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू सन्नी और कोमल यादव, भर्रीटोला डोंडी बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू प्रियंका, नीतू और मुरली गौतम। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं आसना ओगरे और विज्ञान निधि ओगरे की आवाज में आपकी फरमाइश का ये पहला गीत।

कार्यक्रम माटी के स्वर में अभी हमने सुना आसना ओगरे और विज्ञान निधि ओगरे की आवाजों में कार्यक्रम का पहला गीत। कार्यक्रम में आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अमचीरी बाई और राजकुमार अग्रवाल की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत की फरमाइश हमें पत्रों के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और खुशी, और इनके साथ है रौनक, पप्पू, छोटू, लता और पूजा सेन, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज, ये हमारे साथी हैं लुतरा खमरिया से, पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, ईशानी, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, अशरफ, अयाज, अल्फैज, हजीरुन्निशा, सादिया खान, बिल्हा से हमारे साथी हैं शेख नासिर और महजबीन बानो, जांजगीर महंदा से रामनारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुमलता और खुशबू कुमारी कश्यप, ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा और मनोज कुमार कंवर, शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी, आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और इनका पूरा परिवार। आइए सुनते हैं आप सभी की मिलीजुली फरमाइश पर अमची रिबाई और राजकुमार अग्रवाल का गाया ये गीत।

कार्यक्रम माटी के स्वर का अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास, जय, देवेश, धनवंतरीन बाई, मोतिम बाई मानिकपुरी, ये हमारे साथी हैं गणेश धाम परसुली बालोद से। देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मायाराम रजक, पुनेश्वर, फानेश्वर, मुकेश हाव्या, टानिया रजक। शांतिनगर भाटापारा से मिलावदास, कुलदीप, संतोष, संदीप, अजित, कुलदीप, बिरजा, संजना और लक्ष्य।

ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त। अलगीडांड जिला कोरबा से जोहित यादव, विपिन, आयुष, फूलजी यादव। शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। तिवर्ता से अमृतलाल अग्रवाल, राजकुमारी, नेहा, आकाश, श्रुति, विवेक, विवान अग्रवाल। श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन। बाजारपारा बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा। गांव परसा टोला अंबागढ़ चौकी से हमारे साथी है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र, तुषारणी मसिया। अंबागढ़ चौकी से ही रिजवान खान, आयशा, सभिया, अनस और रेहान। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं बैतल राम साहू, आशा साहू और साथियों की आवाजों में कार्यक्रम माटी के स्वर का ये गीत।

कार्यक्रम माटी के स्वर का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं कतियापरा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, बमहर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की और इनके साथ हैं मीनाक्षी और निधि देवांगन, हथखेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हारेंद्र और सुशील, रुआ बांधा भिलाई से सुशील जैन, कल्पना, सेया, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन, इंद्रा विहार रायगढ़ से वसीम अक्रम, राजनांदगांव से याकूब यूसुफ, इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम, आदिबा तिवारी, रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय, राधिका, तुषार, डॉली, अलकबीर, पूजा और प्रभा देवी तामुरिया, किकिर मेटा बेलहारी पाटन से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा, गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, जोहत्रीबाई नेताम, ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा, भाटापारा से हमारे साथी हैं मिलव, अजीत, निलक्ष, विवान, बिरजा, संजना, संगीता, अंजलि और चारू मानिकपुरी, सांकरा सोमनी राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, दिवेंद्र प्रताप, मिलिंद्र कुमार, कुलवंतिन बाई, नेहा देवी, टिकेश्वरी, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू, बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर का अगला और अंतिम गीत, जिसे अपनी आवाजों से सजाया है धनीराम रजक और बिरिज बाई ने।

0: कार्यक्रम माटी के स्वर अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: चित्रों कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

अभी आप सुन रहे थे स्निग्धो जीत भौमिक की आवाज में छिपकली फिल्म का गाना, गीतकार सोहम मजूमदार और संगीतकार मीमो। लीजिए अब सुनिए भूत बंगला फिल्म का गाना, विशाल मिश्रा, नकश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, कुमार के बोल और प्रीतम की है तर्ज।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: यसेर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे अमजद नदीम। आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोहेल सेन, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में डबल एक्सएल फिल्म का गाना। गीतकार हैं मुदस्सर अजीज और संगीतकार हैं सोहेल सेन।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया और शालमली खोलगड़े की आवाजों में समीर अंजान का लिखा हुआ और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम एक्शन जैक्सन।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: और आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ड्रीम गर्ल 2 फिल्म से मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कड़ की आवाजें, कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या।

0: होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
1: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहां वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में यह फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो

कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

0: विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम प्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस संबंध में की गई मांग को स्वीकार किया था, जिसके बाद अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाले ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझाव और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए

0: नीतियों पर विचार विमर्श करना है। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थान तथा अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आज से जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में शुरू हो गई है। कल 29 मई तक चलने वाले इस ट्रायल प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि योजना के तहत संस्थाओं के इम्पैनलमेंट और कक्षा छठवीं में प्रवेश की प्रक्रियाओं में वर्तमान में विलम्ब हो रहा है। इसी कारण प्रवेश प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कल 29 मई से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद का पहला फरमाइशी गीत है फिल्म साजन चले ससुराल से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश भेजने वालों के नाम हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, ये हमारे साथी हैं लुथरा खमरिया से, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, कान्हा, आदित्य देवांगन, बमहर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी और निधि देवांगन, मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू, चिंटू और युग कुमार झेरिया, भाटापारा से ही राम कुमार राउत, अमरीका, गणेश, कार्तिक और युवराज राउत, भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल, मोतीलाल, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, भुवन कामरी, मारवाड़ी कुआं भाटापारा से सियाराम और अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, मोहन पारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी, ग्राम महम्मदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती, तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, ईशानु साहू, छनुलाल

कार्यक्रम आपकी पसंद में अभी हमने सुना साजन चले ससुराल फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम पुजारी फिल्म का गीत, जिसे लिखा है नीरज ने और संगीतकार हैं SD बर्मन। इस गीत की पत्रों के माध्यम से हमें फरमाइश मिली है शांतिनगर भाटापारा से मिला उदास, कुलदीप, संतोष, संदीप, अजित, कुलदीप, बिरजा, संजना और लक्की दास की। हटौत बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर, राजकुमारी पटेल। धरसेवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छनूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और CL यादव। जांजगीर महेंदा से रामनारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुमलता, खुशबू कुमारी कश्यप। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ, नईम रजा। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम और नाज प्रवीण। बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, शुरु देवी, दिशा, दिव्यांश और आरोही, इनके साथ है लवी श्रीवास्तव। भाटापारा से हमारे साथी हैं दान सिंह रावत, पद्मिनी, शुभम, सौरभ रावत। ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा और मनोज कुमार कंवर। शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी, आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और इनका पूरा परिवार। आइए सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं? नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, जयप्रकाश, प्रीति, सिद्धांत, शौर्य, सानवी, ये हमारे साथी हैं चिरमिरी रोड कोरबा से। नैला बोरसरा जांजगीर से, हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, मीनाक्षी, उमा, अंजुलता, ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा, प्यारे लाल मिश्रा, हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से, रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, और यहीं से खुशी और रौनक सेन, ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू, ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, बाजारपारा बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा, हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हारेंद्र और सुशील बेलसपुरिया, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मायाराम रजक, पुनेश्वर, फानेश्वर, मुकेश कुमार रजक, इनके साथ में हाव्या और टानिया रजक। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में रविंद्र जैन के गीत और संगीत से सजा हुआ फिल्म हीना का ये प्यारा सा गीत।

0: मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला फरमाइशी गीत है फिल्म खुद्दार से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। राहत इंदौरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत अनु मलिक का है। इस गीत की ख्वाहिशमंद है पहारा हिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर, भुरसुदा से चंद्र प्रकाश, चिराग संतोषी, नेहा भगवानी और गजेंद्र सेन, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत वीरेंद्र और व्रजकांत सारथी, धुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार, युवराज साहू, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रेयांश ठाकुर, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाय खुद्दार फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हो रहे हैं, वक्त है नए गीतों के कार्यक्रम नए तराने का। कार्यक्रम नए तराने का पहला गीत है गुरु रंधावा की आवाज गीत और संगीत में। फिल्म का नाम है तुम्हारी सुलू।

कार्यक्रम नेतराने में अभी हमने सुना तुम्हारी सुलु फिल्म का गीत गुरु रंधावा की आवाज में। कार्यक्रम में आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ गीत। प्रीतम का संगीत है, आवाजें श्रेया घोषाल और वैशाली माड़े की है। फिल्म का नाम है कलंक।

0: कार्यक्रम नए तराने जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले आइए सुन लेते हैं बिलासपुर और उसके आसपास होने वाली यातायात संबंधित गतिविधियों के बारे में ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर में।
1: नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है यातायात संबंधी हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बलिदान, त्याग, समर्पण तथा आपसी भाईचारे का मुस्लिम पर्व ईद उल अजहा आज सर्वत्र हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी को बधाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई प्रातः 7 बजे विभिन्न मस्जिदों में तथा प्रातः 8 बजे ईदगाह में नमाज अदा करेंगे। इसके बाद सभी कब्रिस्तान पहुंचकर अपने परिवारजनों के दिवंगत सदस्यों के लिए दुआएं करेंगे। इस आयोजन के कारण प्रायः सभी मस्जिदों एवं ईदगाह के आसपास लोगों की बड़ी संख्या होगी। यद्यपि इस दौरान सुगम के साथ साथ सुरक्षित यातायात हेतु यातायात का बल सुबह से ही तैनात है, फिर भी आम लोगों से अनुरोध है इस समय यहां से गुजरते समय अपने वाहनों की गति कम से कम रखें, धीरे चलें, सुरक्षित चलें। बिलासपुर शहर के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पर्व को लेकर काफी चहल पहल है। सड़कों में पूरी सतर्कता के साथ चलें। इसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, वर्षा ऋतु आने ही वाली है। लोग वर्षा के प्रारंभ होने के पूर्व अपने नए घर का निर्माण या पुराने घर की मरम्मत में जोर शोर से लगे हैं, ताकि पानी गिरने के पूर्व काम पूरा हो जाए। यहां तक की सोच तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ यह भी देखा जा रहा है लोग अपने घरों के सामने सार्वजनिक सड़क गलियों में भवन निर्माण सामग्री जैसे ईंट, रेत, गिट्टी, मुरूम छण आदि लंबे समय के लिए रख देते हैं, जिससे ये रेत, गिट्टी आदि सड़क या गलियों में बिखर जाती है। इससे सड़कें संकीर्ण होती हैं, रेत, गिट्टी, मुरूम आदि से दो पहिया वाहन फिसलते हैं, लोग गिरते हैं, छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। साथ ही आम यातायात भी बाधित होता है, लोग परेशान होते हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लेवे। सार्वजनिक मार्ग में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना विधि और मानवता दोनों के विरुद्ध है। ऐसा कभी न करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: अभी हमने सुना ट्रैफिक अपडेट कार्यक्रम नए तराने में। अब आइए चलते हैं और सुनते हैं राघव चैतन्य की आवाज में मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ गीत। प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत है, फिल्म का नाम है एनिमल।

कार्यक्रम का अगला गीत है साकेत टंडन की आवाज में। फिल्म का नाम है मलंग। इस गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने और संगीत है द फ्यूजन बैंड का।

कार्यक्रम के अगले गीत में संगीत है प्रीतम का। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। आवाज मोहन कनान की।

कार्यक्रम नए तराने का अगला और अंतिम गीत है अरिजीत सिंह की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल है, फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र और संगीत है प्रीतम का।

अरिजीत सिंह के गाए ब्रह्मास्त्र फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये

0: है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है?
1: कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी।
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे

0: किल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए, आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम, ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
8: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
8: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
1: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।

0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के

0: घाट उतार दिया।
1: कालिका माता की जय।
2: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ।

0: दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के

0: साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी हम सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
4: रियाज रहमान सागर का लिखा ये गीत आपने सुना अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में। एल्बम थी कभी तो नजर मिलाओ।
5: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
6: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
5: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
8: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
9: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
8: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
10: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
8: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
10: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
8: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बटवारा फिल्म का ये गीत था अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का गाया, हसन कमाल के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस संबंध में की गई मांग को स्वीकार किया था, जिसके बाद अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में जल्दी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाले ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 31 मई तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान आम उत्पादन की नई तकनीकों, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आज से जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में शुरू हो गई है। कल 29 मई तक चलने वाले इस ट्रायल प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कल 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार

0: अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं में 23 से 25 जून तक प्रवेश लेना होगा। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कल 29 मई से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे अगले दो दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रूप नारायण सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके निवास पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में दो दो मौतें हुई हैं, जबकि

0: मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक एक मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तरह थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अभिनयत का ये सुरीला संगीत था मंजूर सुल्तानपुरी के बोल मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें फिर वही दिल लाया हूं इस फिल्म का गीत था और इसके पहले आपने सुना जानवर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली हंसी की खनक यादों की महक बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये दो गाना आपने सुना अनजाना फिल्म से, आनंद बख्शी के बोल थे। कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं। विविध भारती के साथ सुरीले सफर में आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओं, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करते, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी कहीं, और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं थोड़े से समय में, हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओं, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया, उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉगिन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज, जो भी आप कहें या इबारत कहें, उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है, तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट। मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था, जहां इस मौसम में सैलानी खूब आया करते हैं। हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा और कहेगा प्रीत तोरी सांची। परदेसी ने फल, कपड़े और टोकरियां भी खरीदी। किसी सपनों की रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं। साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं, इन शब्दों को कैसे चुनते हैं, और हमारे जो श्रोता नए हैं वो भी हमें अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे

भी सुनाऊंगा। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोता, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद बर्फीली चादरों में सिमटी धुंध के नेपथ्य में लुका छिपी करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध के घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है। यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है, इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है। किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वतीय गांव के लोगों की सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नज़ारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, नेपथ्य में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं जरूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना, और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सा मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत, काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओं हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा, पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक, गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है। वैसे हमें खरीदना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हाथ से बनी हुई होती हैं और इन चीज़ों को खरीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मौसम पहाड़ों, चांद, रास्ते, परदेसी, बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ एक गीत भी इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहां की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियां और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं, पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोता, और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं, तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहां फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी, शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश, यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओ, तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है, जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेशियों

जॉय मुखर्जी और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी। SH बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसी ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती है, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेशियों से मिलना, मोहक दृश्य, यकीनन सब कुछ अच्छे लगते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति की एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृति है, जो अपनी विशालता, शांत वातावरण और अलौकिक दृश्यों से हर किसी के मन को असीम सुकून और आनंद से भर देती है। इन खूबसूरत पहाड़ों की ढलान घने देवदार, पाइन और ओक के पेड़ों से ढके रहते हैं, जो प्रकृति की मखमली हरी चादर जैसे दिखते हैं। साथ ही पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलने वाले जलप्रपात और कलकल बहती हुई नदियां पहाड़ों के शांत वातावरण में एक मधुर और प्राकृतिक संगीत घोल देते हैं, जो भी यहां आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अगर फिरदौस बरवे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिछली गर्मियों में मुझे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल खजियार जाने का अवसर मिला। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थी। वहां का सुंदर मैदान और छोटी झील देखने लायक थी। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया। खजियार की ये यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा बन गई। आप ये एक बात बताएं श्रोताओ कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसे ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये साफ सुथरी रहती हैं, और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें जरूर बताएं।

कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी? एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं।

संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओ, वो

बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती हैं। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दियों की तरह रोशनी जगमगाती है तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज्यादा सुकून देता है, जो सर्दी का मौसम सा होता है वो पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है। आवाज आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहां जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताजा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें जरूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटे बर्फ की चादरें में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतः ही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहां अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हां, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहां की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गांव का जिक्र है, वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है, ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थी। पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ, मुझे पहाड़ों पर जाना, वहां घूमना, वहां के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूं तो पहलगांव, शिलांग और खजिया बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओ, वो एक देश है वहाँ के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें, या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीज़ों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं। और अगर हम बात करें शिमले की बात करें, या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें, या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफर क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नजारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मजा आता है और वहां की शीतलता मन को सुकून पहुंचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोताओ, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे, हरे भरे ऊंचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊंची चोटियां, उनसे लिपटा उदक से पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल, ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में। जी हाँ, दो डब्बा बेटा शिखर का, जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

कलाकार बता दें श्रोताओं, और मेरे सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये रात फिर ना आएगी फिल्म का गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है संवेदना पर। आज के आधुनिक दौर में हमारी संवेदनशीलता कहीं खोसी गई है। हमें इंसान बनाने वाली वो भावनाएं, वो संवेदनशीलता बहुत ही कम देखने को मिलती है। हम इतने आक्रामक और संवेदनहीन हो गए हैं कि हमें AI कहना गलत नहीं होगा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हम में भावनाओं की कृत्रिमता बढ़ती जा रही है। एक ऐसा दर्द पनप रहा है जो कि तब होता है जब शरीर से तो कोई सामने हो पर आत्मा से गायब हो।

उपनिषद में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग करके ही भोग करो। जो स्वयं छोड़ता है वही दूसरों को दे पाता है। लेकिन आज मदद करने की भावना जैसे खत्म ही हो गई हो। व्यक्ति खुद पर आई

समस्या के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा करता है, लेकिन वहीं दूसरों को परेशान देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, जिनके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, कोई वजह होती है, कोई लक्ष्य होता है, वो लगभग किसी भी कैसे को सहन करते हुए खुद को जीने और दूसरों को जीवन देने के रास्ते तलाश कर ही लेते हैं।

संस्कृत में कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। हम सोचते तो बहुत हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कार्ल जंग ने कहा था, सबसे तीव्र संघर्ष यदि पार कर लिए जाएं, तो अपने पीछे ऐसी सुरक्षा और शांति की अनुभूति छोड़ जाते हैं जिसे फिर आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता। और फ्रेडरिक नाइट्स की माने तो जो हमें मार नहीं पाता वो हमें और अधिक मजबूत बना देता है। और महाभारत में भी कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, यह आत्मा ये ऊंचाई कमजोरों को नहीं मिलती।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन

0: जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धरमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
3: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ

0: साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ न हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में।

0: सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का, लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता

0: प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफी ने। श्रोता और सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए इजाजत, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है, क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना। क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए।
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय हैं, हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंस गई थी। बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस इसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं। फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा से रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते
1: जी
0: हैं।

0: हाँ तो सुनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये।
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो भी अलग ही इतना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल।
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है।
0: सच में।
1: वैसे ही कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं, हमें ना उनके
0: बिल्कुल
1: काम
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है, कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए। हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल
0: जी
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है, और चेल्लम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेल्लम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, नहीं जैविक तरह की उन्होंने
0: जी
1: खेती की।
0: बिल्कुल। और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल। और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है, उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता

0: काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों के फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
1: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
0: और चल्लमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेल्लमल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
1: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए,
0: जी
1: तो वो परागण के लिए कि बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी,
0: देखिए।
1: तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
0: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चिल्लमल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
1: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
0: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
1: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
0: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से
1: बिल्कुल, और
0: सम्मानित
1: पढ़ाई
0: कर।
1: ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो
0: जी
1: हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
0: और अब एक संदेश सुन ले।
1: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो आरती, हमारी हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
1: बिल्कुल आ रहे हैं, आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: हाँ बिल्कुल, वो तो
0: रहा
1: पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: हाँ ये तो
0: आए
1: होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: सौ
0: बोलना
1: झूठ बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है।
0: उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं,
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर आवाज अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो
0: जी
1: उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: जी एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा

0: सर्वश्रेष्ठ है तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है। कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं। इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूं, करता कुछ नहीं है। तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। उन्हें
1: बिल्कुल
0: सिखाए और हर काम परफेक्ट हो।

0: झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या, बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए
1: क्या बात है।
0: ताकि
1: एक
0: वो और
1: हमारे
0: आगे कर सकें।
1: जी एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करे और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखे। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरह की जो चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो, की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
1: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे आईएएस आईपीएस का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: कि हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
1: जी
0: वो भी सोचेगा कि नहीं अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
1: और
0: इस
1: अब
0: तरह
1: क्या
0: से।
1: करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी
1: सहेली,
0: सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने

0: आरती
1: दिल की बात.
0: सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये
1: जी
0: बहुत सही बात लिखी है
1: बिल्कुल.
0: ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते. और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं. सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है. इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं. और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ खुश करने के लिए. इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं.
0: एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची
1: बिल्कुल.
0: और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता

0: से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो, जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे,
1: बिल्कुल
0: जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भैया इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें,
1: जी,
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते
0: कभी
1: कि
0: कभी ऐसा भी
1: जी
0: होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए उनको
0: जी
1: देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, क्यों ऐसा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है, तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना, बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना, छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में
1: बिल्कुल
0: लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ये आज का युग जो है ना, तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे
1: बिल्कुल
0: मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय
1: बहुत
0: माध्यम
1: ज्यादा
0: है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन
0: जी
1: गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और साथ ही
0: यानी
1: बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई है, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता, ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने
1: बिल्कुल
0: लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी, अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो जो बाहर हम गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं
0: जी
1: और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें

0: में स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर
1: और
0: पड़ता
1: ये
0: है।
1: जो गेमिंग जो है ना, जो होती है ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी
0: तो
1: उन्हें
0: भी
1: कुछ पॉइंट्स
0: हाँ
1: अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं।
0: जी
1: तो ये बच्चे, और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है।
0: बिल्कुल
1: एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा,
0: जी कोई नहीं।
1: सॉरी, समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए, या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
0: बिल्कुल। और एक कुछ होता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
1: और अब क्या करें,
0: एक गीत सुने,
1: सुनते हैं गीत।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाद कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहे ना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहे ना किसी के,
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हारी चलूं, जाना
0: देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाना।
2: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जाकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं, कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद

0: कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर
1: बिल्कुल,
0: लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए हैं खतरनाक।
0: जी
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती, ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही
1: सही
0: है।
1: बात है, फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे
1: बिल्कुल,
0: हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना, वो सिर्फ सीमित मात्रा
1: बिल्कुल
0: तक
1: वो
0: हो।
1: मनोरंजन तक ही रहना चाहिए,
0: जी
1: बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए।
0: जी और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना
1: जिंदगी की
0: चाहिए?
1: रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई है,
0: धीमी हो
1: क्योंकि
0: गई है।
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि
0: जी
1: हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ
0: जी
1: हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है। तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है।
0: जी
1: तो कभी कभी होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे
1: कोई
0: स्पीड
1: आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है, थोड़ी दूर
0: कम।
1: तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकता है, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना, जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे ऐप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का
1: एक ही
0: करेंगे
1: कर
0: कि
1: रहे हैं,
0: टाइम, तो सारे अगर ऐप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है। तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जिससे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे, तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको
0: और
1: इंटरनेट की।
0: राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल लेने खड़ा रखें, और दूसरा एंटीना को हॉरिजेंटल लेने आड़ा रखें। यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए ना।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सकें, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले,
1: बिल्कुल, एक गीत सुन
0: सुनते
1: लेते
0: हैं
1: हैं।
0: गीत।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये इसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें, और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उन्होंने कहा कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
0: अरे
1: बात
0: वाह,
1: है तो
0: देखा,
1: पढ़ाई हो
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: जी। और
0: क्योंकि
1: अभी
0: अति हर चीज के लिए भी
1: अब
0: बुरी होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: अति सर्वर्थ वर्जेत, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती, आज की
1: आज की
0: मुलाकात
1: मुलाकात बस
0: बस
1: इतनी।
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल सभी का स्वागत करती हूं। आकाशवाणी अपने 90

0: हर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूं। और ये एक प्योर नॉस्टेल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, और जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूं कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस बल का पार्ट हूं, मैं इस बल का हिस्सा हूं और मुझे यहां कुछ करने का मौका मिला है
0: जी। होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये नल मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चले। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड

0: एग्जामिनेशन के लिए अपियर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
1: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो आपको क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
0: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे। वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
1: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती है। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तीन चार पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है।
1: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ?
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, सीआरपीएफ ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल वीआईपी सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता
0: है? एनएसजी और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और इन सब की सिलेक्शन उस यूपीएससी के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास वन गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: मैं एमबीए करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयां आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं

0: ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया है कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था, उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह बहुत खुशी की बात है। मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ, देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफकोर्स मैं भी काफी खुश था।
0: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं, वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके एमबीए, या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस किस प्रकार के आप बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता सीआरपीएफ तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहां भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो क्रिकेट उन दिनों, आज भी काफी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद, वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है, तो आपका व्यक्तित्व एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा सीआरपीएफ में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: कंडीशनल
1: अपने,
0: तैयारी जिसे बच्चे
1: हाँ,
0: अक्सर
1: बहुत
0: करते हैं कई
1: मशक्कत नहीं
0: कोर्सेज
1: करनी
0: ज्वाइन
1: पड़ी।
0: करने से पहले।
1: उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहां पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है। जी,
0: जी, तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है, आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी,
0: जी, तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूं आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहां पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची

ना किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियार, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका कौनियाल, और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे

1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी

0: डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यूई थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
1: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हो, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में अब हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ और रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की
0: भावना।
1: क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: कोई ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स हैं, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया उन दिनों। मैं याद करता हूँ एक नक्सल अभियान में, ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहां का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
0: क्या
1: तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौकों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया। तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
0: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारी जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार की बात फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है

आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आप

0: कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया।
1: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअली और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
0: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके। तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
1: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
0: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
1: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
0: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का, लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज ऐसी एक्टिविटीज में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं प्रोत्साहित करता था और सीआरपीएफ भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए।

0: तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है। आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
0: बिल्कुल, रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहनकर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूं कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्य निष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहा हूं, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: आप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं सीआरपीएफ ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ।

0: कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
1: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
0: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूं, मैं अपना और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं और मैं थैंकफुल हूं।
1: जी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हो या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी, 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी, आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
0: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
1: हाँ जी
0: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीतमाला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूं मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
1: बिल्कुल। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
1: बिल्कुल,
0: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
0: निसंदेह।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
0: धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, लक्ष्मी

0: लक्ष्मणगढ़, ससकालो, उदर बसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, लक्ष्मणगढ़, सायर, मानपुर, लंगड़ासाण, ललितपुर, सरगा, पेटला, भरतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ा माचा, चट्टान पारा, महुआ डी, खुटसेरा, पते बहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 93 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 48 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराझर, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का। श्रोताओं, दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद अब वक्त है थोड़ा ठहरने का। एक प्याली गर्मा गर्म चाय, ढलती हुई शाम और साथ में मधुर फिल्मी गीतों की खुशबू।

आपने सुना घर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गुलजार की रचना को सुरों में बांधा था आरडी बर्मन ने। लीजिए पेश है आरडी बर्मन की धुन पर जमीन आसमान फिल्म का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल लिखे हैं अनजान ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत, जहां हर धुन आपकी शाम को

और भी खुशनुमा बनाने के लिए सजाई गई है। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत तराने को किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर की रचना है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, हम लेकर आए हैं आनंद बख्शी की रचना को लता मंगेशकर की आवाज में। आर डी बर्मन का संगीत संयोजन है। फिल्म का नाम है बेमिसाल।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी है, संगीतकार आर डी बर्मन है और फिल्म है रॉकी।

श्रोताओं, चाय की मिठास और गीतों की ये महक भरी शाम बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे रॉकी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम महिला सभा की ओर।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। मैं मंजू कोरी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कहिए सखियों, कैसी हैं आप? ज़रूर स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुश भी होंगी। और इन दिनों भाई गर्मी के मौसम का आनंद भी उठा ही रही होंगी, क्योंकि भाई इसी मौसम में तो हमें तरह तरह के रसीले फल, लीची और आमों का स्वाद चखने को मिलता है। और इसके लिए हम सभी बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार भी तो किया करते हैं साल भर, है ना? लेकिन जहाँ इन रस भरे आमों का हम गर्मी में इंतज़ार करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहनों, गर्मी का मौसम आते ही धूप, पसीना, थकान और शरीर में पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तापमान बढ़ने के कारण कई बार लोग चक्कर, कमजोरी, डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो जाया करते हैं। तो ठीक ऐसे समय में बहनों, हमारे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पेय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सखियों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में खान पान का अपना बहुत ही महत्व है। यहाँ के मौसम के अनुसार लोग भोजन और पेय का चयन करते हैं। गर्मी में शरीर को ठंडा रखने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए कई प्रकार के पारंपरिक पेय बनाए जाते हैं। इन पेयों में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो कि शरीर को बिना किसी नुकसान पहुंचाए पोषण देते हैं। तो सबसे पहले सखियों, हम बात करते हैं छाछ और मट्ठा की। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग हर गांव में और हर घर में गर्मी के दिनों में छाछ पीने की परंपरा चली आ रही है। दही से बनी छाछ में काला नमक, भुना जीरा और हरी मिर्च मिलाई जाती है। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए बहुत

0: बहुत ही लाभदायक होती है। छाछ शरीर को ठंडक देती है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है और पेट की गर्मी को भी शांत करती है। मैंने देखा ये भी गया है कि खेतों में काम करने वाले लोग दोपहर में छाछ पीकर अपने आप को भरपूर तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन भी पाया जाता है जिससे शरीर को ताकत मिलती है। इसके अलावा सखियों, मठा भी यहाँ काफ़ी लोकप्रिय पेय है। मठा हल्का होता है और गर्मी से शरीर को आराम देता है। कई लोग इसमें पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती डालकर पीते हैं। ये पेय पेट की जलन और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। मैं अब बात करते हैं बेल के शरबत की। बेल एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में बहुत ही उपयोगी माना गया है। गर्मी के मौसम में बेल का शरबत शरीर को ठंडक देता है और ये हमें लू से बचाने में भी मदद करता है। बेल का गूदा निकालकर उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर बहुत ही स्वादिष्ट शरबत बनाया जाता है। ये शरबत पेट के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, साथ ही दस्त, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से भी हमें राहत दिलाता है। सखियों, गाँव में आज भी लोग बेल का शरबत पिलाकर अपने मेहमानों का स्वागत सत्कार किया करते हैं। और इसी क्रम में अब बारी आती है आम पन्ना की। ये भी छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय पेय है। कच्चे आम को उबालकर उसमें से गूदा निकालकर इसमें चीनी, काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा मिलाकर अच्छी तरह से फेंट कर फिर ठंडा करके इसे पिया जाता है। आम पन्ना शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और लू से भी हमें बचाता है। इसमें विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा होती है। और बहनों, सत्तू भी एक बेहतर पेय है, इसका भी शरबत यहाँ बनाकर पिया जाता है। तो रोज़ाना इन पेय का इस्तेमाल करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा बहनों, इन दिनों हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। बहुत तले भुने और मिर्च मसालों से भरे भोजन से परहेज करना बेहतर होगा। प्राकृतिक और घर में बने पेय का ही सेवन करना चाहिए। डिब्बा बंद पेय से दूर रहना चाहिए। और हाँ बहनों, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष इन दिनों हमें ध्यान रखना चाहिए। सखियों, हमारी परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं है बल्कि अनुभव और स्वास्थ्य का खजाना भी है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पेय हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के बीच रहकर कैसे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। तो अंत में सखियों, हम यही संदेश देंगे कि गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक पेय अपनाएं और अपने स्वास्थ्य और अपनी संस्कृति दोनों को बचाएं। इसके साथ ही चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अवरुख करते हैं आज की भेंट वार्ता की ओर। आज की हमारी चर्चा का विषय है बहुत ज़्यादा गर्मी, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं पर और साथ ही बच्चों पर कैसे असर डालती है। और आज की हमारी वार्ताकार है श्रीमती डायना थॉमस जी। तो आइए बहनों, सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: हीट एंड प्रेगनेंसी इंडिया प्रोजेक्ट भारत में गर्भावस्था पर गर्मी के प्रभाव का अध्ययन करता है। वेलकम ट्रस्ट द्वारा फंड किया ये प्रोजेक्ट द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ (HSTI), गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल, सिम्स विम्स केयर मदर, इंपीरियल कॉलेज लंदन, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल द्वारा संचालित है। यदि आप 2 से 2.5 महीने प्रेगनेंट हो तो सिम्स OPD नंबर 13 या 14 में हमसे जुड़े।
0: सखियों, माँ बनना हर स्त्री का सपना होता है और शिशु की सुरक्षा के लिए एक माँ हर संभव उपाय भी करती है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से लेकर उसके जन्म तक माँ की दुनिया बस अपने शिशु तक ही सीमित हो जाया करती है। बारिश की रिमझिम बूंदों, ठंडी ठंडी हवाओं के थपेड़े और गर्मी की तपिश, सभी से एक माँ अपने शिशु की सुरक्षा करती है और अपनी ममता के आंचल के सुरक्षा कवच से उसे ढक कर रखती है, संवार कर रखती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन सब के बीच एक गर्भवती की सुरक्षा का विषय भी अति महत्वपूर्ण है? तो सखियों, आज की हमारी बातचीत इसी विषय पर है। सखियों, आज हमारे बीच हैं श्रीमती डायना थॉमस जी। तो डायना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में और हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: डायना जी, आज की चर्चा में बढ़ने के पहले हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय हमारे सखियों को दीजिए।
2: जी, मेरा नाम डायना थॉमस है। मैं टिस से PhD कर चुकी हूँ पब्लिक हेल्थ में। वर्तमान में मैं हैदराबाद में एक संस्था है जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, वहाँ पर रिसर्च फेलो के तौर पर काम कर रही हूँ। और अभी बिलासपुर में हम सिम्स के साथ मिलकर एक स्टडी कर रहे हैं जिससे हम ये देखना चाह रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं पर अधिकतर गर्मी का क्या प्रभाव होता है।
0: तो सखियों, ये तो था हमारी बहन डायना जी का परिचय। और सखियों, आज की बातचीत का विषय बहुत ही महत्व

0: महत्वपूर्ण है कि बहुत ज्यादा गर्मी गर्भवती और शिशुवती महिलाओं पर और साथ ही बच्चों पर कैसे असर डालती है, तो इस विषय में आज हम बातचीत करेंगे और जानना चाहते हैं डायना जी आपसे कि इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बाहर ताप लहर बह रही है, तो डायना जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये ताप लहर आखिर होती क्या है और ये कब शुरू होती है?
1: जी, तो ताप लहर तब होती है जब तापमान कहीं दिनों तक असामान्य रूप से ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए बिलासपुर जैसे जगह पे 40 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तो उसको ताप लहर बोलते हैं, और मान लो अगर 45 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो मतलब जैसे भट्टी सा तापमान होता है तो उसको भीषण गर्मी की लहर भी बोलते हैं।
0: बिल्कुल, और इन दिनों तो ऐसा ही मौसम चल रहा है।
1: जी सही बोले।
0: और इसकी वजह से हमें चिंता क्यों करनी चाहिए कि मतलब इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है तो हमें चिंता तो करनी चाहिए ना?
1: जी,
0: तो किस तरह की चिंता हमें करनी चाहिए?
1: जी, तो बहुत ज्यादा गर्मी से सिर्फ तकलीफ नहीं होती पर सेहत में भी असर होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कुछ मामलों में ये तो खतरनाक भी हो सकता है। खास तौर पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, नई माएं हैं, शिशुवती महिलाएं हैं या उनके शिशु जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रेग्नेंट महिला जिनको शुगर की बीमारी हो प्रेगनेंसी के दौरान, जिनको बीपी की बीमारी होती है, दिल की बीमारी है या उनको जुड़वे बच्चे हैं, तो इनके लिए भी ये और खतरनाक हो सकता है।
0: तो किस तरह से खतरनाक हो सकता है, कुछ हमको विस्तार में बताइए।
1: जी, तो अधिकतर जो देखा जाता है कि इन महिलाओं में और इन बच्चों में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन या फिर शरीर में पानी की कमी या निर्जलीकरण,
0: अच्छा,
1: जिसमें शरीर में पानी की कमी
0: हो जाए।
1: जी जी, तो ये हो सकता है। उसके साथ साथ शरीर में स्ट्रेस बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी में धोखा हो सकता है, धोखा माने बच्चे का ना ठहरना हो सकता है, समय से पहले डिलीवरी होना हो सकता है,
0: अच्छा,
1: या उम्र के हिसाब से छोटा बच्चा पैदा हो सकता है।
0: तो ये सब गर्मी की वजह से संभव है?
1: ये सारी चीजें जो पढ़ाई है ये भारत में नहीं हुई है अभी तक,
0: अच्छा,
1: पर विदेशों में ये सारी पढ़ाई हुई है,
0: अच्छा,
1: और हम अभी यहाँ भारत में ये पढ़ाई कर रहे हैं जिससे हमको पता चले कि भारतीय महिलाओं पर क्या असर होता है।
0: अच्छा अच्छा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में गर्मी का असर हो रहा है, क्या इसके कोई लक्षण हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं?
1: जी, तो हमारे शरीर पे कभी कभी मतलब ये सिर्फ गर्भवती महिलाएं नहीं, सभी के शरीर में छोटे मोटे लक्षण महसूस सबको महसूस होता है। तो उसमें घमोरी हो सकता है,
0: अच्छा,
1: चमड़ी में जलना हो सकता है,
0: हाँ,
1: खुजली महसूस होती है, चकत्ते होता है, जैसे रैश हो गया,
0: हाँ,
1: वो हो सकता है, कभी कभी कुछ लोगों को घबराहट या दिल की धड़कन बढ़ सकती है।
0: अच्छा,
1: तो ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सभी लोगों को महसूस होता है। पर उसके साथ साथ उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इससे और एक लेवल में भी गर्मी के लक्षण हो सकते हैं, और ये आम जनताओं को भी हो सकता है। तो उसमें कभी कभी लोगों को बिल्कुल अच्छा ना लगना या बीमारी सा महसूस होना।
0: वैसे भी देखा गया है डायना जी की गर्मी बढ़ने से सब लोग बेचैन ही हो जाते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गर्मी है, अच्छा नहीं लग रहा है।
1: जी हाँ, ये बहुत ज्यादा होता है पर ये गर्भवती महिलाओं पर थोड़ा ज्यादा हो सकता,
0: अच्छा,
1: है। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा कमजोरी का महसूस होना,
0: ऐंठन
1: आना, जैसे क्रैम्प्स हो सकता है, सर दर्द होना या लूज मोशन वगैरह, ये गर्भवती महिलाओं को भी हो सकता है।
0: तो इनसे बचने के लिए किन किन उपायों पर ध्यान देना होगा?
1: जी, तो सबसे अधिकतर तो डिहाइड्रेशन सबको होता है, तो डिहाइड्रेशन के लिए हमको ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी भी
0: ज्यादा पानी से मतलब कितना पानी हमको जरूरी है?
1: जी, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। अगर आप बोतल,
0: साधारण महिलाओं की अपेक्षा गर्भवती महिलाओं को पानी की ज्यादा आवश्यकता है।
1: जी सही बोले, तो मतलब आप बोतल से लेते हो पानी तो 3 से 4 लीटर तक का पानी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ग्लास में ले रहे हो तो आपको 12 से 16 ग्लास तक पानी लेना चाहिए,
0: और ग्लास भी थोड़ी बड़ी ही होनी चाहिए।
1: जी जी हाँ,
0: ताकि प्यास भी अच्छे से बुझ जाए और पानी की पूर्ति भी हो जाए।
1: जी सही, और अगर आप लोटे में पानी पीते हो तो आप 10 से 12 लोटा पानी पी सकते हो। ये पानी पीना बहुत जरूरी है गर्मी से बचने के लिए। इसके साथ साथ छायादार जगह या ठंडी जगह पर बैठना और आराम करना ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपके शरीर के तापमान कम करने के लिए आप नहा सकते हो, तो जैसे आप अगर दिन में एक बार नहा रहे हो तो गर्मी के मौसम में आप 2 बार नहाइए, उससे आपका शरीर का तापमान थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब आप नहा रहे हो तो आपका सर या बाल भी गीला करें, तो
0: सर से नहा रहे, सर से पानी सर पे ठोक के

0: नहाए
1: जी, उससे भी
0: काफी राहत मिलेगी,
1: राहत मिल सकती है और टेम्परेचर शरीर का थोड़ा सा कम हो जाता है उसमें।
0: अच्छा,
1: इसके साथ साथ खाने में ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: तो खाना किस तरह का गर्भवती महिलाएं इन दिनों भोजन ले
1: जी? तो भोजन में ऐसे बहुत ज्यादा अलग नहीं है, जो आपके घर में दाल रोटी चावल और सब्जी बनती है वो जरूर खाए, ये खाना कभी मिस नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा,
1: क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि गर्मी के मौसम में हमको खाने का मन नहीं करता।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: और
0: सही।
1: फिर हम खाने
0: इन दिनों तो लगता है कि बस पानी ही पीते रहे।
1: जी सही, क्योंकि हमारे शरीर को पोषण भी मिलना जरूरी है, तो खाना खाना बहुत जरूरी होता है इस समय। उसके साथ साथ आप जो फल है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जैसे तरबूज हो गया, वो खा सकते हो।
0: अच्छा।
1: और फिर केला खा सकते हो, तो ये सारे फल अच्छे होते हैं। उसी के साथ साथ सलाड जैसे बना के, खीरा, चकुंदर, प्याज, इसका सलाड बना के सब्जियां, ये सब्जियां भी खा सकते हो, तो इससे आपको पोषण भी मिलेगा और उसके साथ साथ शरीर थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा,
0: पानी की मात्रा भी मतलब शरीर को मिल जाएगी जी, कुछ थोड़ी बहुत
1: जी। इसके अलावा बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको पहले 3 महीने में बहुत ज्यादा उल्टी होती है, और खाने का मन नहीं करता।
0: हाँ, मितली आती है, खाना देख के जी घबराता है, खाना खाने की इच्छा नहीं पड़ती है।
1: जी सही,
0: कई महिलाओं को ये शिकायत होती है गर्भावस्था के दौरान
1: जी। तो उस समय बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ खा लो तो उससे उल्टी भी हो जाती
0: हाँ,
1: है।
0: बिल्कुल
1: जी। तो ऐसे समय में शरीर को ठंडा करने के लिए पानी के अलावा भी कुछ चीजें आप ले सकते हो, जिसमें
0: जैसे कि
1: ORS हो गया, नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ, लस्सी, आम पन्ना, नींबू पानी, नींबू शिकंजी, मट्ठा,
0: माने कुछ ऐसे पेय ले सकते हैं जिससे उनके शरीर में पानी की मात्रा
1: भरपूर हो सकती है। और ये ध्यान देना बहुत जरूरी है इस समय कि आप सिर्फ शक्कर वाला जो बहुत मीठा हो या जिसमें शक्कर का मात्रा ज्यादा हो, ऐसी चीजें ना पिए, जैसे कि जो बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक होते हैं, वो ठंडा मिल जाता है आपको, लेकिन उसमें सिर्फ शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है। तो शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन के दौरान नमक बहुत जरूरी होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, शक्कर शरीर के लिए आवश्यक होता है, पर उसी के साथ साथ नमक होना भी बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, दोनों का बैलेंस होना चाहिए शरीर में।
1: सही बोले, तो ये बैलेंस जब तक नहीं है तब तक आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलेगा।
0: अच्छा।
1: और इलेक्ट्रोलाइट आपके शरीर के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
1: तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी के वजह से भी हमको बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो इसीलिए जब भी आप डिहाइड्रेशन के लिए कुछ लो या गर्मी के मौसम में जब आप अपने शरीर में पर्याप्त पानी लेने के लिए पानी ले रहे हो, तो उसमें शक्कर और नमक ये होना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
1: तो कभी कभी ये हो जाता है कि हमारे पास ये सारी, मैंने बोला नारियल पानी, छाछ वगैरह नहीं मिल पाता है, तो उस समय घर में हम एक घोल बना सकते हैं ORS।
0: अच्छा,
1: का
0: घर में बना सकते हैं, किस तरह से?
1: तो घर में जो घोल बनता है उसमें आपको 1 लीटर उबला हुआ ठंडा पानी, उसमें आप 6 छोटे चम्मच शक्कर डालो और उसमें 1/2 चम्मच नमक डालो।
0: माने कि 1 लीटर पानी हम उबाले, उसको ठंडा करें और उसमें 6 चम्मच चीनी डालें
1: जी,
0: और उसके साथ ही
1: और उसी के साथ 1/2 चम्मच नमक डालें।
0: तो ये तैयार हो जाता है हमारा घोल और इसको हम समय समय पर पीते रहते हैं।
1: तो ये सिर्फ प्रेग्नेंट महिला ही नहीं पर घर पे सभी लोग पी सकते हैं। ये बच्चों को दस्त के समय ये पिलाने भी बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो इससे हमारे शरीर में जो पानी की कमी हो गई है वो काफी हद तक पूरी हो सकती है,
1: पूरी होती है। पर ये ध्यान रहे कि 6 महीने से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को ही ये दे, 6 महीने से कम वाले बच्चों को नहीं देना,
0: उम्र के बच्चों को नहीं देना है ये
1: जी।
0: तो डायना जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो नई नई माताएं बनी है अभी हमारी बहनें, तो अब उनके लिए क्या संदेश देना चाहेगी, उनके लिए क्या कहना चाहती है?
1: तो जो नई माताएं हैं उनके लिए भी डिहाइड्रेशन का खतरा होता है।
0: अच्छा,
1: तो
0: किस तरह से?
1: जी, माँ के दूध में लगभग 27% तक पानी होता है।
0: अच्छा।
1: तो जिसका ये मतलब है कि माँ को भी काफी पानी की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब माताओं को भी पानी की अपने शरीर के लिए पूर्ति करनी चाहिए।
1: जी, जैसे मैंने पहले भी बताया 3 से 4 लीटर पानी,
0: हाँ,
1: या 12 से 16 ग्लास पानी,
0: हाँ,
1: या फिर 10 से 12 लोटा पानी
0: इन माताओं को भी पीना जरूरी है
1: जी, इनके लिए पीना बहुत जरूरी है। और पानी की कमी से इनमें भी थकान, चक्कर आना या दूध की मात्रा भी कभी कभी कम हो सकती है, तो इसका भी उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए जो नई माता है, जो शिशुवती महिलाएं हैं, उन लोगों को पानी पीना बहुत जरूरी होता है। और ये शिशुवती महिलाओं को पानी के साथ साथ

0: खाना खाना भी बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि जो दूध मिल रहा है उसमें पोषण भी मिलना चाहिए बच्चे. अच्छा. को दूध जो प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में वो बनने के लिए भी पोषण का जरूरत होता है.
1: बिल्कुल सही.
0: तो पोषण माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है. तो पौष्टिक आहार में जिसमें ताकत भरपूर वाला खाना हो, जैसे कि खिचड़ी हो गया या फिर गुड़ वाली दूध या भुने हुए चने या जो प्रेगनेंसी के बाद जो लड्डू मिलते हैं.
1: अच्छा.
0: वो लड्डू खाना.
1: हाँ, हाँ.
0: ये इससे आपको पोषण मिलता है.
1: अच्छा.
0: उसी के साथ साथ ये महिलाओं को आराम करना भी बहुत जरूरी होता है. अपने शरीर को ठंडा रखना जरूरी होता है. जिसमें आप नहा सकते हो और या अगर हर बार नहाने नहीं होता है या बहुत ज्यादा नहाने नहीं हो रहा है तो गीले कपड़े से अपना शरीर पोछें.
1: ठंडे ठंडे पानी से जी स्पंज करके अपने शरीर को पोछ सकते हैं.
0: जी जी.
1: इससे भी उन्हें काफी ठंडक का
0: एहसास होगा. जी.
1: और डायना जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो शिशुओं के लिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए. ये नई नई जो माताएं हैं वो बच्चों के लिए किस तरह की और उन्हें सावधानी रखने की आवश्यकता होती है.
0: जी. तो शिशुओं को जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं उनको माँ का दूध ही दिया जाता है. उन बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ और नहीं देना चाहिए.
1: अच्छा. हाँ. तो कई बार होता है कि छोटे बच्चे को शहद चटा देते हैं.
0: जी.
1: या चम्मच से दूध पिलाते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है क्या?
0: चम्मच से जो दूध माँ का दूध होगा तो पिला सकते हैं.
1: अच्छा.
0: पर उसके अलावा अगर आपके डॉक्टर ने कोई निर्देश दिया है तो ही उसको करें,
1: वरना अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए.
0: सही सही है. और एक ऐसी चीज जो नई माताओं को पता नहीं होता है, जो माँ का दूध होता है उसमें दो प्रकार के दूध होते हैं.
1: अच्छा.
0: तो उसमें एक पतला दूध होता है और एक गाढ़ा दूध होता है.
1: जी, जी.
0: जो दूध पिलाते वक्त जो पहला दूध आता है वो पतला दूध होता है जिसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है.
1: अच्छा.
0: तो पानी की मात्रा उसमें ज्यादा होने की वजह से बच्चे की प्यास बुझती है पहले दूध से.
1: अच्छा.
0: और फिर जो दूसरा गाढ़ा दूध होता है वो गाढ़े दूध में फैट और पोषण के तत्व भरपूर होते हैं.
1: अच्छा अच्छा.
0: तो ये जो दूसरा दूध है उससे बच्चे का भूख मिटता है.
1: अच्छा.
0: तो नई माओं को ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि एक स्तन पूरा खाली होने तक बच्चे को दूध पिलाएं.
1: अच्छा.
0: बीच में बंद ना करें और ये पूरी तरह खाली होने दें. एक स्तन जब खाली हो उसी के बाद दूसरे स्तन का दूध पिलाएं.
1: अच्छा.
0: ताकि बच्चे को दोनों
1: मिल सके.
0: जी.
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारी बहनों को दी.
0: जी. कई बार माओ को पता नहीं होता है और
1: बिल्कुल.
0: तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को जो दूसरा वाला गाढ़ा दूध ना मिलने के वजह से उनका वजन ना बढ़ रहा हो.
1: अच्छा.
0: क्योंकि बच्चे को सिर्फ जो प्यास बुझाने वाली दूध है वही मिलता है.
1: वही दे के माँ उसको शांत करा देती है और बच्चा भूखा रह जाता है.
0: जी. और फिर बार बार उसको दूध पिलाना पड़ता है.
1: हाँ,
0: क्योंकि भूख मिटी नहीं.
1: कह रही हैं आप, बहुत ही सही बात है ये.
0: जी.
1: कई माओ को पता नहीं है इस बारे में. तो डायना जी, चलते चलते आप हमारी सखियों को और क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: आखिर में मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत में पिछले एक दशक से ही बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होने लगा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और इस वजह से हमको भी बहुत ज्यादा पता नहीं है कि हमारे शरीर में गर्मी का क्या असर हो रहा है. हमारी ये जो स्टडी है इसमें हम यही देख रहे हैं कि हमारे शरीर में और ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के शरीर में गर्मी का क्या असर होता है. तो इसमें जो अभी तक भारत सरकार द्वारा जो दी गई है गाइडलाइंस में यही बोला जाता है कि पानी भरपूर पिए. जैसे बोले हमने 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी होता है. उसी के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं जो माँ का दूध पी रहे हैं उन बच्चों को माँ का दूध दिया जाए तो भरपूर पानी पिए, हल्के कपड़ा पहने. बच्चों को भी माओं को भी हल्का कपड़ा पहनना जरूरी होता है और पौष्टिक खाना खाए. ये चीजें करना बहुत जरूरी होता है. और अगर मान लो आपको कोई लक्षण है तो तुरंत अपने नजदीकी मितानिन या अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से जरूर इलाज कराएं.
1: तो डायना जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो तक आई, हमारी सखियों से इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा की, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: शुक्रिया.
2: हीट एंड प्रेगनेंसी इंडिया प्रोजेक्ट भारत में गर्भावस्था पर गर्मी के प्रभाव का अध्ययन करता है. वेलकम ट्रस्ट द्वारा फंड किया ये प्रोजेक्ट जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ HSTI, गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल, सिम्स, पिम्स, केयर मदर, इंपीरियल कॉलेज लंदन, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल द्वारा संचालित है. यदि आप 2 से 2.5 महीने प्रेग्नेंट हो तो सिम्स OPD नंबर 13 या 14 में हमसे जुड़े.

0: बहुत ज़्यादा गर्मी गर्भवती और शिशुवती महिलाओं और बच्चों पर कैसे असर डालती है, इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी हम बातचीत कर रहे थे वार्ताकार थी श्रीमती डायना थॉमस जी। हमें उम्मीद है सखियो ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी, साथ ही उपयोगी भी लगी होगी। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब आइए बहनों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहनों मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर आइए प्रगति शर्मा जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सुनते हैं।
4: नमस्कार बहनों, मानव जीवन में स्वास्थ्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन। ये एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्वस्थ महिला के जीवन का सामान्य हिस्सा होती है। इसके बावजूद आज भी समाज के कई हिस्सों में मासिक धर्म को लेकर अनेक भ्रांतियां, अंधविश्वास और संकोच मौजूद हैं। इन कारणों से कई लड़कियां और महिलाएं उचित जानकारी तथा स्वच्छता सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़े मिथकों को दूर करना, महिलाओं और किशोरियों को सही जानकारी प्रदान करना तथा मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझाना है। मासिक धर्म क्या है? मासिक धर्म महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। सामान्यतः ये प्रक्रिया किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाती है और लगभग हर महीने नियमित रूप से होती है। इस दौरान गर्भाशय की आंतरिक परत से रक्त और अन्य ऊतक शरीर से बाहर निकलते हैं। ये महिलाओं के प्रजनन तंत्र का सामान्य और स्वस्थ संकेत है। आज भी अनेक लड़कियां मासिक धर्म के विषय में पर्याप्त जानकारी के अभाव में अस्वच्छ साधनों का उपयोग करती हैं, जिससे संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मासिक धर्म के समय स्वच्छता बनाए रखना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि इस अवधि में उचित स्वच्छता का पालन नहीं किया गया तो बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्वच्छ और सुरक्षित सैनिटरी पैड, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करना चाहिए। सैनिटरी पैड को समय समय पर बदलना आवश्यक है। लंबे समय तक एक ही पैड का उपयोग करने से संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। आज भी समाज में मासिक धर्म को लेकर कई प्रकार की गलत धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ स्थानों पर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक स्थलों में जाने, रसोई में प्रवेश करने या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका जाता है। कई लड़कियां इस विषय पर खुलकर बात करने में संकोच महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही इसे छिपाने योग्य विषय माना जाता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों, स्वच्छ पानी और सस्ते सैनिटरी उत्पादों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कई लड़कियां महंगे सैनिटरी पैड खरीदने में असमर्थ होती हैं, जिसके कारण वे कपड़े या अन्य असुरक्षित साधनों का उपयोग करती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं का समाधान शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। विद्यालयों में किशोरियों और किशोरों को मासिक धर्म के बारे में वैज्ञानिक और सही जानकारी दी जानी चाहिए। इससे लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और लड़कों में भी इस विषय के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि महिला

0: महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और समानता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे किसी भी प्रकार के संकोच, भेदभाव या अंधविश्वास से जोड़ना उचित नहीं है। प्रत्येक लड़की और महिला को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए ताकि वह अपने स्वास्थ्य का सही ढंग से ध्यान रख सके। एक जागरूक और संवेदनशील समाज ही महिलाओं को समान अवसर और बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है। यही मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का वास्तविक उद्देश्य और संदेश है। धन्यवाद।
1: मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर अभी हम आप और हम अभी एक प्रगति शर्मा जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ सुन रहे थे। उम्मीद है सखियो ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी, साथ ही उपयोगी भी लगी होगी। अब सखियो समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो चलते चलते आपसे इतना ही कहेंगे कि अभी गर्मी के दिनों में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। खाना पीना ताज़ा ताज़ा संतुलित भोजन खाएं, सलाद और हरी सब्जियों का विशेष सेवन करें और दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक जहाँ तक हो सके घर से बाहर ना निकले, अगर जाना ज़रूरी है तो अच्छी तरह से ढक कर ही जाएं। और अब सखियों समय हो चला है विदा लेने का, तो अगली बार होगी आप सबके साथ दोबारा जल्द ही मुलाकात। इस वादे के साथ अब दीजिए अपनी रेडियो सखी मंजू को अनुमति। आप सभी को हमारा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम महिला सभा अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 6:20 पर और शाम 7:00 ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे शाम 7:20 पर। बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था। शाम 7:30 पर किसान वाणी के अंतर्गत सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम में सूकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम विषय पर श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर राम उत्तलवार, अतिरिक्त उप संचालक जिला बिलासपुर, और कार्यक्रम के संचालक होंगे नंदू भैया। आज के बाद में चर्चा का विषय होगा मछली पालन हेतु सरकारी योजनाएं। रात्रि 8:00 श्रोताओं के पत्रों के जवाब हम देंगे कार्यक्रम चिट्ठी मिली में। रात्रि 8:20 पर हम पेश करेंगे शास्त्रीय संगीत।

आइए अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। प्रातः 6:30 पर खेती की बात का विषय होगा सेवंती फूल की उन्नत खेती। वाचक होंगे त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय। प्रातः 6:45 पर नव विहान में चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रतिदिन की तरह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। गांधी चर्चा का समय होगा 7:20 पर। विषय होगा अस्पृश्यता आंदोलन।

बजकर 30 मिनट पर आनंद लीजिएगा यादों के झरोखे से कार्यक्रम का। सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। सुबह 10 बजे हम लेकर आएंगे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के छुहारा बाई और साथी के स्वरों में सुनेगा पंडवानी और राजा नल के किस्सा हम सुनवाएंगे आपको गंगादास और साथियों की आवाजों में। संध्या 5:05 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युवा जगत का समय होगा संध्या 5:35 पर। आज की बात में चर्चा का विषय होगा नशा मुक्त युवा सुरक्षित भविष्य। क्रम होगा मेरा शहर बिलासपुर का। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का आनंद आप ले सकेंगे 6:20 पर और 7:00। ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे 7:20 पर। बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा FPO को जाने और जुड़े। 7:30 पर हम पेश करेंगे फोन इन कार्यक्रम। बकरियों में PPR बीमारी के लक्षण उपचार व रोकथाम के उपाय विषय पर श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर राम उत्तलवार अतिरिक्त उप संचालक जिला बिलासपुर। कार्यक्रम के संचालक होंगे राम सनेही। रात्रि 8:00 चंदाना दीक्षित की मधुर आवाज सुनेगा कार्यक्रम सुगम संगीत में और रजनीगंधा की खुशबू हम बिखेरेंगे रात्रि 8:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायत में मिली गौण खनिज निधि के हिस्सा। प्रदेश में लागू हो ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य अन्य जगह में मनाए जावा थे। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ सरकार ह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ला मजबूत करे बर जिला पंचायत में ला घलो गौण खनिज निधि में हिस्सा दे के आदेश जारी कर दे है। खनिज साधन विभाग के मुताबिक गौण खनिज मल्ले मिलैया राशि के वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बीच तय अनुपात में करे जाही। ये निधि के उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसन विकास काम में करे जा सकही। मुख्यमंत्री उसने साह कहने की यह फैसला ले पंचायत मल्ला आर्थिक मजबूती मिली और ग्रामीण विकास काम में तेजी आई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहने की भारत के किसान मन के मेहनत के सेती देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह संबोधित करत श्री चौहान बताने की यह बचत देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन ले ज्यादा है, जो उन पांचों बच्चर की तुलना में 5.3% ज्यादा है। श्री चौहान कहने की 2 दिन के ये सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण पर एक रोड मैप तैयार करे में सहायक हो ही। ये सम्मेलन के उद्देश्य अब यह खरीफ ऋतु पर रणनीति में विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में जल्दी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू करे जाही। ए बारे में काली रायपुर में खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की अगुवाई में राज्य स्तरीय कार्यशाला रखेगी। बैठक में श्रीमती कंगाले है कहने की केंद्र सरकार अवैया खरीफ बछर में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम ला प्राथमिकता के संग लागू करे के दिशा में काम करत है। एक बार राज्य के राइस मिल मन ला तकनीकी रूप ले अपग्रेड करना जरूरी होगी। ओमन आश्वस्त करी है कि मिलर्स डाले दे गए सुझाव और समस्या के परीक्षण करके जरूरी प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजे जाही। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

0: सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा अपन भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी के परिचालन उत्पादन वित्तीय स्थिति और विकास योजना मन के समीक्षा करी। ए दौरान मन संयंत्र प्रबंधन लक्ष्य निर्धारित करे, सुरक्षा मानक ल मजबूत करे और उत्पादन में सुधार ऊपर विशेष ध्यान दे के निर्देश दिए। पत्रकार मले गोट बात करत श्री पंडा कहिने कि राव घाट परियोजना छत्तीसगढ़ सेल और पूरा देश भर महत्वपूर्ण हवे। राव घाट में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार मौजूद हवे, एखर ले देश ल लौह अयस्क मिलही और भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तारी क्षमता ल घलो मजबूती मिलही। श्री पंडा सेल के भविष्य के योजना मन के बारे में बताइने की कंपनी अवैया 4 ले 5 बछर में अपन उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन ले बढ़ा के 35 मिलियन टन हर बछर करे के लक्ष्य रखे है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत अवैया कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी देश भर के अपन 20 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज मन में बीमित श्रमिक मन के लयिका मन पर 700 सीट आरक्षित करे है। एक हर बार ऑनलाइन आवेदन करे के आखिरी तारीख 31 मई ले बढ़ा के 21 जून कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के श्रम आयुक्त कार्यालय के मुताबिक ये आरक्षित सीट में योग्य उम्मीदवार के चयन नीट यूजी परीक्षा के माध्यम ले करे जाही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विद्यार्थी मन ला आश्वस्त करे है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE डहर ले शुरू करेगी नवा ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले एक प्रगतिशील साधन आए। श्री प्रधान नई दिल्ली में CBSE अधिकारी मन के संग बैठक के बाद ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं के परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगति और तकनीकी खराबी ला लेके श्री प्रधान स्वीकार करी है कि कुछ एक मुद्दा आगू आए है। ओमन विद्यार्थी मन ला आश्वासन दे है कि पुनर्मूल्यांकन के दौरान जम्मू शिकायत मन के समाधान करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़वो बाँचे समाचार कोती। ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के आने आने भाग में मनाया जावत है। त्याग और बलिदान के ये तिहार ला मुस्लिम समुदाय के लोगन मन हा ईदगाह और मस्जिद मन में विशेष नमाज अदा करी। ईद उल जुहा हजरत इब्राहिम डहले खुदा के आदेश के पालन करत अपन इकलौता बेटा के कुर्बानी दे के सुरतमा मनाए जाते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद उल जुहा में देशवासी मला बधाई दीन है। आज महान क्रांतिकारी और चिंतक वीर दामोदर सावरकर के जयंती हवे। ये मौका में मुख्यमंत्री श्री शाह और मला श्रद्धांजलि अर्पित करीन। श्री शाह कहिने कि भारत के स्वाधीनता पर अपन जिंदगी समर्पित करैया वीर सावरकर के अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्र निष्ठा और अटूट संकल्प के अमर कहानी हवे। विपरीत परिस्थिति में घलो राष्ट्रहित के प्रति उखर अटूट प्रतिबद्धता अवैया पीढ़ी ला निरंतर प्रेरित करत रही। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल है बरसा ले पहली जम्मू सड़क के मरम्मत कर ओला गड्ढा मुक्त करे के निर्देश दिए हैं। रायपुर परिक्षेत्र के दोनों मंडल के स्वीकृत निर्माणधीन और निविदा प्रक्रिया के प्रगति के समीक्षा के दौरान श्री बंसल अधिकारी मले कहिने कि स्वीकृत काम के प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून तक भेजे जाही। ओमन निर्माण काम के गुणवत्ता के संगे संग समय सीमा में पूरा कर लेला कहिन। संगे संग अनुविभागीय अधिकारी मला लेके प्रमुख अभियंता तक जम्मू अधिकारी मला हर मंगलवार मुख्यालय में रहे के घलो आदेश दिन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 के संशोधित तारीख और प्रवेश पत्र जारी कर दे है। NTA के मुताबिक परीक्षा 31 मई 6 और 7 जून के रखे जाही। ईद उल जुहा के 3 तारीख में बदलाव करेगी है। NTA बताई है कि 31 मई के परीक्षा देवई या उम्मीदवार मन के प्रवेश पत्र जारी कर देगी है। 6 और 7 जून के परीक्षा बार प्रवेश पत्र जल्दी जारी

0: करे जाही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में काल 29 मई ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। 3 दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे कहा करही। उन्हें समारोह के पगरैती मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करही। ए मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल माई पहुना के रूप में मौजूद रही। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डहर ले आयोजित ये महोत्सव में आम के आने आने किस्म के प्रदर्शन लगाए जाही। 31 मई तक चलेगा ये महोत्सव के दौरान आम उत्पादन के नवा तकनीक प्रसंस्करण और विपणन संबंधी विषय ऊपर विशेषज्ञ डहर ले मार्गदर्शन दे जाही। प्रदर्शनी हरेक दिन मंझनिया 12 बजे ले रतिया 9 बजे तक आम लोगन मन पर खुले रही। अब थोड़ी समाचार मौसम के। प्रदेश के मौसम में काली ले बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार बताएंगे कि ये बेरा एक ठीक चक्रवाती घेरा झारखंड में बने हैं। उन्हें एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश ले आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। एक असर ले प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। काली उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में हवा गरेर और गरज चमक के संग वर्षा होने की संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में करा गिर सकत है। काली ले अवैया 4 दिन तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभावित। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायत मल्ला मिली गौण खनिज निधि के हिस्सा। प्रदेश में लागू हो ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य अन्य जगह में मनाए जावत है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। श्रोताओं कार्यक्रम के इस सुरीले सफर में स्वागत है आप सभी का। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो दूरियों को जोड़ती है। देश के अलग अलग शहरों और प्रदेशों से आए आपके प्यारे ईमेल्स को हमारे स्टूडियो तक पहुंचाती है और फिर उन्हीं भावनाओं के साथ हम सजाते हैं संगीत की इस महफिल को। तो चलिए अब रुख करते हैं आज की पहली फरमाइश की ओर। फिल्म का नाम है दर्द। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है खय्याम ने और इस गीत को सुनना चाहा है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। छत्रपति संभाजी नगर से हमारे साथी हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल और राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। राजकोट से हमारे साथी हैं रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सोंगा मगरलोट से हमारे साथी हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। पोड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन। मदनपुर से हमें फरमाइश आई है श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू की। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा चंदन। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्व, हिमाक्ष। पाढ़र कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे। भटिंडा पंजाब से हमारे साथी हैं परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत। तीवरता डबरीपारा जिला कोरबा से हमें

फरमाइश भेजने वाले हमारे साथी हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र गजेंद्र, जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी, सुरेंद्र मरकाम मोहन सिंह, सोहत्री बाई मनमोहन सिंह, गिरजाबाई चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य मेघा मस्कीन। नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत फरहत, रिफत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना दर्द फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता ने, जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथी हैं आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, मनवर, प्रियांशी। भाटाबारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता लोखंडे। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह। धरदेई सरगांव से चंदुलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनित, कृष्टि पटवा। बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से हमें फरमाइश भेजी है शाहजी बोड़खे नंदा, हनुमान बोड़खे ने। पलेरा टीकमगढ़ से हमारे साथी हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति साहू। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी। मुंबई से आदिबा नास, फातिमा, नासरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत, चेतन भगत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे। इस गीत को स्वर दिया है कुमार सानू ने, समीर की रचना को सुरों में बांधा है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।

कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए सुनवाते हैं आपको श्रोताओं की पसंद पर सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत। गायकी उदित नारायण की है, रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का है और पसंद आप सभी की। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र, जोई यामिनी, उमा तिवारी। हांसी से

राजू मिगलानी, बब्बू, डब्बू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डब्बवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव, नवीन, युवराज साहू, बुलंदशहर से हमारे साथी हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुढ़ाना वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से हमें फरमाइश भेजी है अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार ने, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी, मालती चौधरी, भाटापारा से हमारे साथी हैं बच कमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारिकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला, विशाल नहावकर, फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत और अर्पिता, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवार, चंद्रकला रिवार, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाइना, मैंडी शर्मा, मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगीज खातून, गुमला झारखंड से नजमूल होदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानु पिरिया, माधुरी किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में सिर्फ तुम फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनने का ये अंक यहीं संपन्न हुआ। इसका शेष भाग हम लेकर आएंगे शाम 7 बजे, तो जुड़े रहेगा आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। शाम 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कुछ ही देर में रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?

0: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

0: अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोडमैप तैयार करने में सहायक होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाली की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाली ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ अशोक कुमार पंडा ने अपने भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र BSP के परिचालन, उत्पादन, वित्तीय स्थिति और भविष्य की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संयंत्र प्रबंधन को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और उत्पादकता में निरंतर सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पंडा ने कहा कि रावघाट परियोजना छत्तीसगढ़, सेल और पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। रावघाट में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार मौजूद है। इससे देश को लौह अयस्क मिलेगा और भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तारित क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।
1: छत्तीसगढ़ के लिए, सेल के लिए और कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद है रावघाट, क्योंकि उसमें काफी रिजर्व्स हैं एंड वो रिजर्व्स को माइनिंग करते हुए कंट्री में अवेलेबल होगा आयरन ओर एज वेल एज भिलाई स्टील प्लांट का जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आएगा उसमें भी इसका योगदान रहेगा। इसलिए सेल का मैनेजमेंट का सारे फोकस इसके ऊपर है। ये रॉ मेटेरियल सिक्योरिटी होगा जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आ रहा है भिलाई में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
0: श्री पंडा ने सेल की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया कि कंपनी ने अगले 4 से 5 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है।

0: सेल ने अच्छा एफर्ट्स लिया है, डिफरेंट प्लांट्स में ग्रीन फील्ड एक्सपांशन कर रहा है एंड कहीं कहीं पर आगे बढ़ गया है, बाकी जगह में ऑलरेडी अप्रूवल हो चुकी है। तो उसी हिसाब से हम लोग 20 मिलियन टन से 35 मिलियन टन में चले जाएंगे 4-5 साल में, ये हम लोगों का लक्ष्य है।
1: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देशभर के अपने 20 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए 700 सीटें आरक्षित की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 21 जून कर दी है। छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त कार्यालय के अनुसार इन आरक्षित सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन नीट यूजी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। आज महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री साय ने कहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले वीर सावरकर का जीवन अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा और अट संकल्प की अमरगाथा है। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित के प्रति उनकी अट प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। महासमुंद जिले में हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए के एलपीजी घोटाला मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ठाकुर पेट्रोकेमिकल अभनपुर के संतोष सिंह ठाकुर और सार्थक सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक खाद्य अधिकारी अजय यादव और मनीष चौधरी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जिले के बम्हनी धान उपार्जन केन्द्र में हुए धान घोटाला मामले के मुख्य आरोपी और तत्कालीन केन्द्र प्रभारी गंगाधर जगत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पर 1.16 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के धान गबन का आरोप है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे, वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस समय एक चक्रवाती घेरा झारखंड में बना हुआ है, वहीं एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से तटीय आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने के आसार हैं।
2: मेघ गर्जन का गतिविधि जो है वो कल से प्रदेश में आगामी 2-3 दिन तक रहने की चांसेस है। कल उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर इस प्रभाव से तेज हवा के साथ साथ ओलावृष्टि और वज्रपात होने के भी चांसेस है, लेकिन कल से लेके आगामी 4 दिन तक पूरा प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट आने की चांसेस है। गिरावट लगभग 2 से लेके 4 डिग्री होने की संभावना है।
1: इस बीच जगदलपुर में आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान जगदलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में ओले भी गिरे। इधर गरियाबंद जिले में देवभोग थाना क्षेत्र के माहौलकोट गांव में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। और राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं

0: एटीआई के रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कल 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिन्दी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। या
2: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। आइए पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में। श्रोताओं, दिल से भेजी गई इस फरमाइश को करते हैं पूरी, जिसे सुनना चाहा है निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत करमजीत कौर ने। बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाड़कर, टुक टुक प्रिंस एकांश, सुमित ध्वनि गवहाड़कर ने। पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकैस्ट्रो। तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता पोहरकार। कांकेर से भारत राम पडौती, जयंती हेमंत उमंग मोक्ष पडौती। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा। कालेगांव जाफराबाद से हमें फरमाइश आई है सुधाकर राजे जाधव की, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश, प्रणाली सर्वद, सानवी देशमुख। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, नगमा अजीम। गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ ऋचा देवांगन। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर। दिल्ली से सोनम सना और आदिबा। मलौट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू, गुड्डू जाजोरिया। दुर्ग से हमारे साथी हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत और मक्कार जहान। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। कतियापारा जूना बिलासपुर से हमें फरमाइश भेजी है सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बुड़गान से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता, प्रिंस एकांश गवहाणकर।

पैठन से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित कुमार, हैप्पी राय। ददरेंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। पजौनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके। फिल्म का नाम है एक नज़र, स्वर है लता मंगेशकर के, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, संगीत है।

आपने सुना एक नज़र फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। श्रोताओं, इस गीत को सुनने के लिए हमें कई अलग अलग शहरों से ईमेल्स आए हैं, तो आइए पढ़ते हैं उनके ईमेल्स को। बठेना पाटन से परमेश्वर साहू राजबत्ती, काजल पूर्वी हेजल, राजेश रेशमा साहू की। मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से हमारे साथी हैं बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, आराध्या साहू। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहारी। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला आसमा श्याम कुंवर। लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, ललीमा, खुशांत साहू, निशांत साहू। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज और चाहत। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अलकबीर। सरगांव बाजार से हमें फरमाइश भेजी है नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद ने। बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन। दिल्ली शहर से आसमा परवीन, अमना परवीन और वली अंसारी। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी की रचना है, उत्तम सिंह की तर्ज है। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

श्रोताओं, आप लिखते रहिए और हम आपकी पसंद के गीतों से सजाते रहेंगे ये संगीत भरी शाम। तो पेश है आशा भोसले और विनोद कुमार राठौर की आवाजों में बाजीगर फिल्म का गीत। गीतकार जफर गोरखपुरी हैं, संगीतकार अनु मलिक है और फरमाइश आप सभी की। जालंधर से संदीप मक्कार, ज्योति मन्नत, भरत कमल साहनी। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली नारंग। बरेली कैंट चनेहटी से विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा हीरोमन, पल्लवी राजेश्वरी वर्मा। कोंडला उदयपुर, सरगुजा से जीवनधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा सोमारसाय, कलेश्वर सिंह सुखराम, हीरामणि ऐश्वर्या पैकरा। भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जीशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। बिलासपुर से हमारे साथी हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, नीरज रावत, शुभम सौरभ रावत। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी। मुंबई से अहमद सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद। दिल्ली से प्रमीला, हेमा और अंतरा सिंह। डुमराव से वली उल्ला अंसारी, सोनम वली और आसमा वली। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

बाजीगर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद कुमार राठौड़ की आवाजों में। इसी के साथ कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं ग्राम सभा की ओर।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो श्रोता मन ला राम राम झोका जित्तू भाई के जय जोहार। तो भाई का हाल चाल है, कैसन तिपत है सूरज देवता? अब देखा भाई नौतप्पा बड़ तिप थे, फिर अभी एक घंटा ले देखा थन भाई, अब दूरिया दूरिया नहीं जानन, फिर हमर बिलासपुर शहर में थोकन आंधी पानी चलत है, हल्का फुल्का ठंडक के एहसास होते। अभी नौतप्पा के बात करी तो ये 9 दिन सबले ज्यादा घाम होते। अब जेन व्यवस्था बने हैं नौतप्पा मतलब 9 दिन ज्यादा तिपे के, तो अगर खेती किसानी के बात करी तो ये 9 दिन के तिपई हा खेत खाद बर बड़ बढ़िया होते। काबर ओखर से आगू आने वाला है बरसाती सीजन, तो हानिकारक जतका जीवाणु होते तेन मर जाते भुंजा जाते। और अवैया खेती बर ए सीजन है नौतप्पा घलो अच्छा होते, तो कुछ बुरा होते कुछ चीज तो कुछ अच्छा होते। अब शहरी मन का करत है भाई, अतका गर्मी है गर्मी है, तो भाई देखा अब का होते, विकास के नाम में हम कंक्रीट के जंगल बिछाबो और हर घर में 2-3 ठी एसी चलही तो खर जेन गर्मी निकल ही वो तो लगबे करही। हमन बर सूरज देवता हा अन्याय नहीं करे, जतका पहली घाम देत रही थे ओतके देते। तब भाई देखा अब हम अपन काम व्यवस्था की बात करी तो गर्मी के धान किसान भाई मन लगाए रहे हैं, अपन जतका वो मन के शक्ति रही से पानी जतका में पूर गई सोही, तो जन हरहुन धान रही सोही तो उनमें हार्वेस्टर चल गए। जैसे 1010 मन के बात करी तो रेट है दरी कम मिले, 1600-1700 1650 में बेचाइस, तो किसान मन अपन मूड ल धर लिन कि भाई अतका मेहनत करें और रेट हाथ के गई। अब जैसे थोकन गरहुन रही से जैसे महामाया के रेट की बात करी तो मन है

0: रात में जाते कतको के कटा गे जिन पहली लगाए रहे न, फिर ओखर कोचिया और मंडी रेट घलो गिर गई। ओखर रेट 1920-2100 के रेट चलत है। तो कुल मिला के आज हम यही मंडी विपणन व्यवस्था के बात करबो। भाई देखा, आज हम गोठियाबो कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था। हमर काम है कोनो फसल ला तैयार करना, फिर सही दाम में बेचना घलो जरूरी होते। जैसे अभी समय हमला सही दाम नहीं मिलिस, पाछू पे देखें मांग ज्यादा रही से तो हमर रेट है जेन हरहुन धान रही से ओखर 1900-2100 गई से, गरहुन धान के रेट है थोकन 2400-2500 गई से। विपणन के मतलब होते खेती के उपज ल खेत ले ग्राहक तक पहुंचाए के पूरा प्रक्रिया, जौन में फसल के तौलाई, सफाई, भंडारण, परिवहन और बिक्री सब शामिल रहते। अगर किसान ल अपन उपज के सही बाजार मिल जावे तो ओखर मेहनत के सही कीमत मिलते और आमदनी घलो बढ़ते। अब बात करत हैं भाई मंडी के व्यवस्था के। तो सरकार द्वारा बनाए गए कृषि उपज मंडी में किसान अपन फसल ला बेच सकत है। मंडी में व्यापारी बोली लगाते और जेन व्यापारी ज्यादा दाम में देवे ओ या ओ दाम में तय करे ओमा फसल ला बेचे जाते। ए व्यवस्था ले किसान मन ला खुला बाजार के जानकारी मिलते और धोखा खाए के संभावना कम होते। आजकल MSP की अगर बात करबो, जैसे खरीफ में हमारे धान लिए जाते, मूंग चना और आनी बानी के फसल लिए जाते, आजकल सरकार किसान मन हमन ला MSP के सुविधा दिए है, जैसे समर्थन मूल्य हवे ओखर से कम मां नहीं लिए जा सके। तो MSP के माध्यम से बरसाती धान, चना, मूंग जैसन फसल के न्यूनतम दाम तय करे जाते, जेखर मतलब ये होते कि बाजार में दाम कम भी है तब वो MSP तो किसान ला मिल जाते। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था एक बढ़िया उदाहरण है, जी हाँ, समिति और मंडी के माध्यम से किसान मन के फसल खरीदे जाते। एक बात और, कैसे आप मन राष्ट्रीय बाजार से जुड़ के जानकारी पा सका था, एकरो गोट लगोठियाबो पहली आवा सुनथन ए छोट छोट संदेश मल्ला।
1: हीट एंड प्रेगनेंसी इंडिया प्रोजेक्ट भारत में गर्भावस्था पर गर्मी के प्रभाव का अध्ययन करता है। वेलकम ट्रस्ट द्वारा फंड किया ये प्रोजेक्ट द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ HSTI, गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल, सिम्स, फिम्स, केयर मदर, इंपीरियल कॉलेज लंदन, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल द्वारा संचालित है। यदि आप 2 से 2.5 महीने प्रेग्नेंट हो तो सिम्स OPD नंबर 13 या 14 में हमसे जुड़े।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हीट एंड प्रेगनेंसी इंडिया प्रोजेक्ट भारत में गर्भावस्था पर गर्मी के प्रभाव का अध्ययन करता है। वेलकम ट्रस्ट द्वारा फंड किया ये प्रोजेक्ट द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ (CHSTI), गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल, सिम्स विम्स केयर मदर, इंपीरियल कॉलेज लंदन, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल द्वारा संचालित है। यदि आप 2 से 2.5 महीने प्रेग्नेंट हो तो सिम्स OPD नंबर 13 या 14 में हमसे जुड़े।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो संगवारी हुए हो इस छोट छोट संदेश ओकर बाद हम आप मन सो गुठियार हैं कि आजकल के जमाना डिजिटल है और जतका घर में मनखे है उतका घर में फोन हो गए है और बढ़िया बड़े वाले फोन हो गए है। तो उखर से हम ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के माध्यम से ऑनलाइन घलो का रेट चलत है राज्य देश भर में उखर व्यवस्था ला भी देख सकत हन। किसान मन अपन अलग अलग मंडी के दाम देख सकत है ई नाम के

जिन वेबसाइट होते हैं। आखिर में ही कही वो के खेती के संग संग सही विपणन की जानकारी होना बड़ जरूरी हवे। जब किसान अपन फसल के सही बाजार और सही दाम पाहे तभी खेती लाभ के धंधा बनी, नवा तकनीक मंडी व्यवस्था और सरकारी योजना के फायदा उठा के किसान मन अपन आय ला बढ़ा सकते। ए हो जैसे अभी हमन धान ला काटेन गर्मी के, हर किसान बर अलग अलग कोचिया आते, अलग अलग धान ला खरीदैया आते। मैं कहता हूँ कि भाई

दूसर ऊपर हम भरोसा आंखी बंद करके नहीं कर सकन। तय हो संगवारी हो, आज आप मतलब जानकारी दिन कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था के। अब देखा समय हो थे 7:30 बजे, ये है आज आप मतलब बढ़िया सुघर हेलो किसान वाड़ी फोन इनके जानकारी देबो सुनाबो। तो चला उखर से पहले हम चलिए अपन लाभ के वाड़ी किसान वाड़ी में।

0: किसानवाड़ी कार्यक्रम में जम्मो किसान भाई बहनी मन के स्वागत है। जित्तू के फेर से राम राम, जय जोहार। किसान भाई हो, अब हम बात करबो खेती किसानी के। खेती किसानी संग किसान भाई मन आनी बानी के व्यवसाय घलाव करते, जैसे मछली पालन है, पशु पालन है, और कुछ दूसर व्यवस्था करके समन्वित ढंग से करी तभी खेती किसानी लाभ के धंधा होते। आज के बात में हम आप मन बर लाए हैं मछली पालन बर सरकारी योजना। तो मछली पालन बर सरकारी योजना की बात करी तो प्रधानमंत्री मत्स्य पालन मत्स्य संपदा योजना एक केंद्र के सबले बड़े सब्सिडी आधारित योजना है। लाभ की बात करी तो नवा तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक और रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम मतलब RAS लगाए में सब्सिडी सरकार देते। अनुदान में सामान्य वर्ग OBC वर्ग ला 40% तक, महिला और अनुसूचित जनजाति जाति के किसान मनला 60% तक अनुदान हवा। राज्य पोषित मत्स्य पालन योजना स्टेट स्कीम के बात करी तब मछली के बीज जिन अंगुली का होते जाल और आइस बॉक्स में 50% अनुदान में उपलब्ध कराया जाते विभाग डहर ले। ग्राम पंचायत और स्थानीय समिति ला मछली पालन बर तालाब ला पट्टा में दिए के विशेष व्यवस्था है। आवेदन बर आप मत्स्य विभाग में संपर्क कर सका था। एकर बर जरूरी दस्तावेज में अपन ला भूमि या तालाब के दस्तावेज जैसे नक्शा खसरा या पट्टा के फोटोकॉपी लगी, आधार कार्ड मतलब पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति अगर आपमन आरक्षित वर्ग से है काबर एमा अनुदान के मात्रा ज्यादा है, और बैंक पासबुक के विवरण। ये सब लेके आपमन कृषि विभाग या मछली विभाग में संपर्क कर सका था जेखर से आपमन ला लाभ मिले। अब भाई चला देखा समय हो गए, हमन चलत हन आज के हेलो किसान वाड़ी फोन इन ला सुने बर। तो आज के सुघर विषय रही से सुअर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण उपचार और रोकथाम। एकर बर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे हैं जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर के अतिरिक्त उपसंचालक और विशेषज्ञ डॉक्टर राम उत्तलवार जी। तो आवा चेत लगा के सुनिए कार्यक्रम के संचालन हमर नंदू भैया करीन।
1: फोन इन कार्यक्रम में आप मन के हमन स्वागत करथन। झोकाओ नंदू भैया के जय जोहार, राम राम। संगवारी हो हमन आप मन बर आनी बानी के जानकारी लेके आथन, और कहूँ आप मन सुकर के पालन करत हो तो एकर बर अभी के बेरा में घलाओ चेत रखना हवे। तो वही विषय में हमन लाहन के सुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण उपचार और रोकथाम के बारे में विशेषज्ञ हवे डॉक्टर राम उत्तलवार जी, अतिरिक्त उप संचालक प्रभारी पशु चिकित्सालय जिला बिलासपुर में। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है, जय जोहार।
2: जय जोहार।
1: हाँ तो संगवारी मन के फोन आते तो फोन ले लेते। हेलो
3: हेलो।
1: हाँ जी जय जोहार।
3: हाँ भैया मोर माया भरे, राम राम।
1: राम राम।
3: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: हाँ तो स्वागत है भैया।
3: हाँ भैया देखना जी दे, अभी तो गर्मी वर्मी बढ़िया पड़ा था वह खेती की सबसे काम घलो बने चलते।
1: हाँ हाँ
3: भैया, राम राम।
2: राम राम का वर्मा जी।
3: हाँ भैया।

0: ये स्वाइन बीमारी का होथे और एकर पहचान हमन कैसे ढंग ले कर सकथन और का ये है एक जानवर ले दूसरे जानवर में भी फैल सकते तो एकर बचाव कैसे करें भैया यही जम्मो बात ले पूछे बर फोन लगाए हो डॉक्टर भैया।
1: हाँ का है स्वाइन फीवर मतलब स्वाइन ला जैसे ये टेक्निकल वर्ड है स्वाइन मतलब सुअर होते सुअर की प्रजाति जैसे स्वाइन बोलते हैं ना फीवर यानी बुखार तो हाँ। सुअरों में बुखार जब आते तेज बुखार होते तो ये स्वाइन फीवर कथन ठीक है ये बहुत हाँ। एक विषाणु जनित बीमारी है जो बहुत प्राण घातक होते और ये चाहे कोनो प्रकार के सुअर चाहे देसी हो चाहे जंगली हो सब में होते और इनमें फिर त्वरित उपचार न करने पर मृत्यु दर निश्चित है ना। और बात क्या है देखो इनमें क्या है दो प्रकार के स्वाइन फीवर होते एक हाँ। होते अफ्रीकन स्वाइन फीवर और दूसरा होते क्लासिकल स्वाइन फीवर।
0: अच्छा अच्छा
1: ठीक है ना। अब हाँ। दोनों के कारक अलग अलग है। अफ्रीकन हाँ। स्वाइन फीवर जो थे वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस से होते ठीक है हाँ। और जो हाँ। क्लासिकल होते वो होते तुम्हारा पेस्टी वायरस से होते है ना।
0: अच्छा अच्छा
1: अब हाँ। दोनों में क्या है दोनों में लक्षण तो लगभग 19-20 रहे थे दोनों में बुखार तेज रही सुअर खाना छोड़ दही आंख से चिपड़ निकल लग जाही है ना वो बीमार मतलब बीमार के अलग दिख से सुस्त दिख के समझ में आ जाए कि बुखार आ गया है चुपचाप बैठे तो है ना कोना में उठे कोशिश नहीं करते बैठे रहते और ये एक बात का होते मैं पतला दस भी होते जानवर कमजोर होते लड़खड़ाने लगते पेट में चत्ता पड़ जाते है ना लाल नीला रंग के तो और एक बात खाना पीना छोड़े वजह से जानवर मृत्यु हो जाते ये वायरल बीमारी है। अच्छा ये जो फैलते जो है ना एक सुअर से दूसरे सुअर में कहा होते जैसे कोई संपर्क में आते अब संपर्क मतलब कैसे उकर खाना पाना दाना पानी पड़े है बीमार है नहीं खाते थोड़ा मुंह लगा छोड़ दिए तो स्वस्थ सुअर जैसे ही आ गए ओमा मुंह डाली वो बीमार पड़ गए ओकर जो जैसे अब चारा है फेंक दिए चार उठा के तो दूसरा जगह फेंका तो वहां पे बीमारी पकड़ ली अब वहां जो सुअर आई तो वो लोग पकड़ ली बीमारी तो एक सुअर से दूसरे सुअर में फैल करती इस प्रकार से। दूसरी बात कहा होते मैं सबसे बड़ी बात ये है कि ये विषाणु जो है ये बड़े ढीठ विषाणु है ये जो ठंड में ना जब ठंडा देश जैसे हमारे यहाँ सुअर तो गर्मी में भी रहते पर विदेशों में कहा बड़े सुअर थे अब यॉर्कशायर ब्रीड बोलते हैम्पशायर ऐसे नाम से बड़े बड़े आते उनमें कहा होते ये बीमारी का वायरस जो रहते ना ठंडा प्रदेश के है वो कई साल तक ऐसे पड़े रहे चुपचाप से और जब यहाँ से थोड़ा सा मौसम बदली हल्का सा मौका मिले वो चढ़ जाते ऊपर पर अब बीमारी फैला देते तो ये मैं फिर मृत्यु दर अत्यधिक थे कि पूछो मत कि यहाँ पूरा पूरा सवेरे देखे दूठी बीमार है शाम तक देखे चार पांच बीमार होकर सटसन निपटना चालू जाते ठीक है। वही प्रकार जो होते हैं क्लासिकल जो स्वाइन फीवर बताए दूसरे प्रकार के इला हम हाफ कॉलरा बोलते एपिक प्लेग बोलते प्लेग में से मतलब जो चूहा होते रहे प्लेग बीमारी जो आदमी में होते रहे हाँ तो उमा का है पूरा यहाँ से वहां तक आदमी एक घर से दूसरे घर जैसे कोरोना वायरस में मरी से अपन आदमी मन वैसी प्लेग में मरते तो वैसी ये पिक प्लेग बोलते हैं ना पिक के यहाँ से मतलब पूरा महामारी फैल जाती है यहाँ से वहां तक।
0: अच्छा
1: है ना। और ये पेस्टी वायरस से होते ये दूसरे वायरस से खर अच्छा ये भी वैसे ही संपर्क माने से पानी के दूषित पानी हो गए चारा हो गए तो ये जब फैलते एक दूसरे से संपर्क में आते तब ये बीमारी फैलते एहू में त्वचा लाल हो जाते सांस लेने तकलीफ होते गाभिन सुअर जो रहते वो बच्चा फेंक देते और खाना पीना छोड़ के फिर सीधा मृत्यु हो जाते घर।
0: अच्छा अच्छा भैया ठीक डॉक्टर भैया बहुत सुंदर जानकारी दे आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ धन्यवाद भैया
2: फोन आवा थे डॉक्टर साहब। हेलो
3: हेलो किसान वाणी।
2: हाँ संगवारी जय जोहार।
3: जय जोहार राम राम भैया।
2: नाम बताओ गांव के नाम।
3: मैं बेलगाना शक्ति बारा ले श्याम शंकर मिस्त्री बोला था सर जी।
2: हाँ ठीक है लेवा तो प्रश्न रखा आज के
3: घर के विषय में जानकारी लेना रे सर जी।
1: देखो भाई क्या है तस्वीर पर बताऊं कि स्वाइन फीवर है यानी सुअर का सुअर यानी चार गुड़िया जानवर है ना ओखर बारे में है ओखर बीमारी के बारे में बता था शुगर के बारे में नहीं है शुगर यानी शक्कर की बीमारी नहीं है ये शुगर की बीमारी है जानवर जो होते ओखर बारे में बीमारी है ना एक जनरली बैगा आदिवासी मन और कई प्रकार के लोग मन पालते ठीक है और जैसे सुअर में होते दो प्रकार सुअर होते एक तो देसी सुअर और एक विदेशी सुअर अब विदेशी सुअर जो रहते वो खर मांस मटन ज्यादा चढ़ते है ना तो आजकल एक सिस्टम में आ गए लोग की फार्मिंग चालू कर दिए सुअर फार्म बड़े बड़े खुले लग गए है ना बिलासपुर कोटा में भी हमारे एक फार्म देखे हुए वो दिन जाके बढ़िया फार्म खोले हो और जो देसी सुअर जो पालते हमारे यहाँ पे किसान मन तो वो अच्छा खेती फायदा लेते तो इमें जो बीमारी होते वो स्वाइन फीवर बीमारी कहते ये एक प्राण घातक बीमारी है जो विषाणु जनित है मतलब जो वायरस होते है ना और ये जो बीमारी है

0: है वो देसी सुअर हो चाहे विदेशी हो चाहे जंगली हो, ये सब प्रकार सुअर मिलते, ठीक है। और ये जो है ना दो प्रकार के होते, एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहलाते और दूसरा क्लासिक स्वाइन फीवर कहलाते।
1: हाँ सर जी।
0: तो जो स्वाइन फीवर जो बीमारी है ना एमा का है, एक मतलब जो जानवर जो है एमा बहुत तेज बुखार आई, उल्टी दस्त चालू हो जाए थे, उमा कमजोरी आए लगते, नाक से और आंख से स्राव निकलने लग जाते, त्वचा लाल नीला पड़ जाते और तेज बुखार और पानी की कमी इस वजह से ना धीरे धीरे सुअर की मृत्यु हो जाते। एक उपचार जल्दी नहीं कराए तो मृत्यु तो निश्चित है। अच्छा, उसी प्रकार जो स्वाइन फीवर है वाला प्लेग सुअर के प्लेग बोलते हैं। अब प्लेग जो है ऐसे बीमारी है कि एक के घर के बाद दूसरा घर से पूरा घर के घर निपटा जाते हैं। पूरा जैसे एक घर में मान लो आसपास 10-12 घर में सुअर पाले हैं करीब 100-200, तो सब के सब एक दो दिन में खत्म हो जाते हैं। तो एक प्लेग बीमारी बहुत जल्दी बीमारी होते हैं, एक इलाज बहुत करना जरूरी है। तत्काल जाके संपर्क करके वहाँ पहले इलाज करवाओ और जो स्वस्थ पशु वाले किनारे कराओ। किनारे कर एक बार थोड़ा देख के वाला 15 दिन क्वारंटाइन में रखे, एक बार अगर ठीक ठाक लगा थे तभी टीकाकरण करवाओ। और जो गाभिन पशु को देखना हो बच्चा फेंक देते, तो ये प्रकार से किसान मन के बहुत नुकसान होते। तो कहने का मतलब है कि ये जानवर जो है बड़े गरीब किसान मन पालते तो उनका आमदनी के स्रोत रहते, तो वो बेचारा मन बहुत नुकसान झेलते। तो एक स्थिति पूरा टीकाकरण कराते रहना चाहिए, साल साल में एक बार स्वाइन फीवर के नाम से वैक्सीन आते है ना, और सरकार विभाग द्वारा हमारे उपलब्ध रहते, समय समय पे मिलत रहते, तो हम जा के करवाते रहते। और ये जो है बीमारी है एमा, सबसे बड़ी बात है कि जो भी है बीमारी हो एक बार जो सावधानी बरतना सबसे बड़ी जरूरी है कि सभी जो औजार है जो सामान होगा बर्तन है कपड़ा लत्ता जहाँ रखे है सामान मतलब कोठा बने हैं मतलब पूरा निर्जुतीकरण करना है। आदमी मन के प्रवेश जो कोठा में जहाँ पे जानवर बंधे है या रखे है वो वहाँ पे आदमी के भी अंदर प्रवेश बंद करवा देना चाहिए। और बंद करवाने मतलब काम तो करना है सबला, पर बाहरी आदमी के प्रवेश बंद करवा देना चाहिए। नहीं तो कहा होता है जैसे जूता में पकड़ वायरस चिपक के आ गया पता नहीं चले और जैसे वो फार्म में घुसे तो वहां बीमारी फैल जाते। तो पहले जब फार्म में घुसेड़ना भी एक उन्होंला तो वहां पे पहले मनुष्य के जो निर्जंतीकरण करना है और जो सामान वान है जितके भी सामान है सब लोला डिसेंटाइज करना है बोला, ठीक है। और उसके बाद जो है खाना पीना का जो सामान है बोला पूरा नष्ट करना, तरीके से नष्ट करना है, दवाई डाल के नष्ट करना है, ठीक है। और जो बीमार सुला वाला बहुत अलग से रखना है, ये सब चीज ख्याल रखना है, तभी आपके अच्छे से सुअर फार्म हो सकते और आपके गरीब किसान के लाभ हो सकते,
2: ठीक भैया।
1: हाँ भैया बढ़िया लगी भैया जी जानकारी है।
2: हाँ लेवा फोन लगाया होकर धन्यवाद।
1: राम राम जय जोहार।
0: धन्यवाद,
2: बढ़िया बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी संगवारी मनला। आओ हमन जानबो फोन आवत सर। हेलो
3: हेलो जय जोहार नंदू भाई। राम राम।
2: राम राम, गांव के नाम बताओ।
3: भाठा पारा जतरंगी ले बोलत रहे नंदू भैया हिरू राम साहू।
2: स्वागत है भैया, लेवा तो डॉक्टर सर मन बैठे हवे, प्रश्न रखो फिर।
3: डॉक्टर साहब राम राम भैया।
0: राम राम का भैया बताओ।
3: वही से थोड़ा जानकारी नहीं भैया कैसे सुअर सब पाले भैया मन।
0: हाँ
3: वो में का बीमारी से भी गर्मी में पद दस्त हो कहा थे किन्नी फेसबुक से कहा थे भैया मन भैया फोन कर रही से जाएंगे थोड़े बेची के तो बताते भैया के बारे में।
0: देखो का है सुअर तो ऐसे बहुत ढीठ जानवर होते, सब प्रकार की बीमारी तो उतनी जल्दी नहीं पकड़ वाला है ना, पर लेकिन जानवर कोई भी हो जैसे आदमी होते वैसे सब बीमारी पकड़ते। तो ये सुअर में सबसे खतरनाक बीमारी होते है स्वाइन फीवर बीमारी।
3: अच्छा
0: है ना। और स्वाइन फीवर बीमारी में क्या होते कि जानवर जो है वो वायरल बीमारी है ना, तो वायरल की कोई तो उपचार हो नहीं सके, तो हम ये देखते हैं कि भाई जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो लोग रोक सकन, जत के कोशिश करके वो लोग रोक सकन। और वायरस जो अपन 7 दिन का समय लेते वो समय निकल जाए के बाद जानवर बच जाते, पर लेकिन वो 7 दिन में बड़ा सावधानी रखना है कि कोई दूसरे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन ना आ जाए है ना। तो ये स्थिति हम लोग घर उपचार करने पड़ते। और ये जो बीमारी है इसमें सब दो प्रकार के होते, अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर दो बोलते हैं ना। ये प्लेग टाइप की बीमारी है, महामारी बीमारी बोलते ला, और छूत की बीमारी है। एक दूसरे के संपर्क में जैसे ही आते चाहे वो चारा पानी के माध्यम से आए चाहे वो एक दूसरे के चिपकने से आ जाए बाजू में लेटने से, ठीक है। तो ये बीमारी जो है बड़ा घातक बीमारी में क्या है, तेज बुखार होते, उल्टी दस्त हो जाते, कमजोरी आए लगते, नाक व आंख से चिपड़ लिखे निकल जाते, पूरा शरीर के जो चमड़ी पेट तरफ के थे लाल लाल नीला चकता चकता पड़ जाते पूरा तरफ है ना। तो और क्या है वायरस के होने की वजह से इधर उपचार नहीं है। तो इधर हमारे सबसे बड़े बात है कि एक बचाव उपचार पहले करना चाहिए। तो बचाव उपचार में सबसे बड़े कहा होते टीकाकरण करने पड़ते। ये अप्रैल मई के महीने में सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से

0: टीकाकरण कराए जाते तो मैं किसान मन से आग्रह करूं कि जैसे से गर्मी सीजन आते अप्रैल मार्च अप्रैल के जैसे आखिरी आखिरी आते तो सरकार टीका भेजते तो हमारा टीकाकरण करवा लेना चाहिए है ना। और ओखर बात का है टीकाकरण करने के बाद जो होते ना जानवर अपन जैसे अपन कोरोना के लगवा लिया मन सब कोई है ना तो अब अब फुर्सत हो गए हमारे कि हमला नहीं हो एक तो निश्चित हो जाते उसी प्रकार एमआर टीकाकरण कराए से आदमी निश्चित हो जाते कि भैया चलो हमारा सुअर तो बच जा ही। अच्छा आज की तारीख में क्या सुअर फार्मिंग बहुत बड़े वो हो गए है इंडस्ट्री बन गए है ना हमारे छत्तीसगढ़ में उतके नहीं है पर बाहर दूसरे प्रदेशों में खैर बहुत बड़े मांग है चाहे वो बिहार ले लो पटना ले लो तुम्हारा झारखंड ले लो तरफ ज्यादा एक डिमांड है। रांची में देखकर वो फैक्ट्री वो है सुअर काटे वो भी है पूरा फैक्ट्री है तो ये यहाँ पे सुअर इंडस्ट्री जो बन गए है एक एक सुअर कम से कम 40 से 50 हजार के बिकते अच्छा वजन के है ना तो आदमी मन कर इंडस्ट्री में ध्यान देते हो तरफ ध्यान दे लग गए पर ये बीमारी का अगर ध्यान नहीं दे ही तो फिर तो किसान मन के बहुत नुकसान होते तो बताया ना खैर सबसे बड़े उपचार ये है कि उपचार तो है नहीं तो एक सबसे बड़े बचाव उपाय है कि टीकाकरण करना है समय समय पे है ना। और जो भी किसान देखे बराते फार्म देखे बराते या किसी के जाते तो अभी जब भी जानवर के शेड में जाओ चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी नस्ल के सुअर तो बोला पहले सबसे पहले कि भैया जो आदमी जाते घर में भी आए हैं तो भैया पहले डिसेंटाइजेशन या निर्जंतुकरण करना है निर्जंतुकरण और ओखर बाद ही वाला प्रवेश देना है मतलब एक मदान छूत की बीमारी यहाँ से वहां फैलते एक आदमी से दूसरा में जैसे जैसे आया घुस गए मैं जूता में लेके आ गया मैं जूता पहन के आया हूँ घर में अब बीमारी में जूता चिपके रही मतलब कहाँ मालूम है जैसे ही पहुंचे वायरस से दिखते नहीं उठ सट से बीमारी मार दी। तो एक स्थिति जो है सबसे बड़ी बात है कि जितके जानवर है बोला समय समय पे टीकाकरण करना है हल्का से भी लक्षण दिखे तत्काल डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत उपचार करवाना है जो भी प्राथमिक उपचार कह लो या अगर बैक्टीरिया न हो अगर उपचार हो सके तो करवा लेना चाहिए।
1: हाँ सर हाँ हाँ तो हो तो गया सर
0: चलो धन्यवाद
1: धन्यवाद थैंक यू सर।
2: हाँ सर जी बढ़िया जानकारी बताया हो आओ हमन जानबो के जौन स्वाइन फीवर हवाए के स्वाइन फ्लू हवाए इहू ला बताओ सर जी एमा जौन हवाए है ना दोनों एक कस लगते
0: तो नहीं नहीं स्वाइन फीवर ये पूर्णतः सुअरों की बीमारी है और स्वाइन फ्लू जो है ये है तुम्हारा मनुष्यों की बीमारी
2: जी
0: सुअर में भी पाई जाती है पर मनुष्यों में ज्यादा इसके लक्षण दिखते हैं ठीक है इसलिए ये प्राणघातक बीमारी होती है स्वाइन फ्लू भी जैसे सुअरों के लिए स्वाइन फीवर है वैसे मनुष्यों के लिए स्वाइन फ्लू
2: जी
0: इसका जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है ठीक है ये बीमारी जो है वायरल इन्फेक्शन ये हुआ है वो हुआ है लेकिन ये इन्फ्लुएंजा वायरस से है और वो है स्वाइन आपका पिस्टी वायरस से होते दोनों में फर्क है ये H1N1 बीमारी के वायरस से होते है ना तो एक स्थिति का है इमा सुअर तो जल्द ठीक हो सका थे इस बीमारी से लेकिन मनुष्य के में जब हो जाते तो बहुत दिक्कत आते और मनुष्य के मतलब इमा सांस लेने तकलीफ होते तो मृत्यु मतलब चांसेस बढ़ जाते उखर।
2: जी
0: तो ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है नाम जरूर स्वाइन है पर ये दोनों में बहुत बड़े फर्क है
2: जी तो एक रोकथाम बर फिर चेत रखे बर
0: देखो स्वाइन फीवर के तो हम तो किसान मन बोलते कि अपन टीकाकरण कराते रहो और ये इन्फ्लुएंजा वायरस के जो है इन्फ्लुएंजा के नाम के दवाई आते जो होम्योपैथी दवाई टेमी फ्लू करके आदमी के आदमी आते वो सब खा लेते फिर स्वाइन फ्लू के चांसेस कम हो जाते
2: जी बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी।
0: मैं चीज और बताना चाहूँ आपला ये जो स्वाइन फीवर बीमारी है एक टीकाकरण बहुत जरूरी है तो टीकाकरण कौन महीने में कहाँ से कब से चालू करना चाहिए सबसे बड़ी बात आते
2: अच्छा।
0: है ना काला करना चाहिए काला नहीं करना चाहिए तो ये जो है 3 महीने से जितके बड़े सुअर है इस सब ला टीकाकरण करना चाहिए समय समय पे
2: अच्छा
0: ठीक है साल में एक बार करना चाहिए और जो गाभिन सुअर है खासकर आखिरी के 40 दिन के जो होते पीरियड उमर नहीं करना चाहिए अब कुल जो जो गाभिन की अवस्था जो होते खरे 14 दिन के रहते 3 महीना 3 हफ्ता 3 दिन के 14 दिन के होते
2: जी
0: तो ओखरे जो 40 दिन के आखिरी समय रहते उमर टीकाकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए
2: अच्छा
0: टीकाकरण से इम्यूनिटी डाउन जैसे हो तो हो सकते बच्चा फेंक दे तो एक स्थिति हम बोलते हैं कि भैया गाभिन पशु ला मत कराओ और जो 3 महीने से बच्चा से लेके ऊपर तक जितके बड़े है सब में एक बार साल में टीकाकरण कराते रहना
2: जी। हाँ बढ़िया जानकारी बताया सर जी आओ अपन तरफ से जैसे संगवारी मन सुकर के पालन करे थे तो ओकर बर कौन नस्ल के देख रेख ज्यादा करे पड़ते देसी नस्ल में का देख रेख करे पड़ते इहुला संगवारी मन ला बताओ सर।
0: देखिए सुअर पालन एक पहले पूर्व में माना जाता है बहुत नीचे स्तर के द्वारा पाला जाता था
2: जी
0: है ना तो इसलिए लोग इसको एक तो नाली में मिलता था सुअर देसी सुअर तो उसको देख के लोग घृणित रहते थे
2: जी
0: ठीक है कई धर्मों में तो आज भी वर्जित

0: इसके लिए जो है आज की तारीख में जो इंडस्ट्री बन गया है, स्वाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई है,
1: जी
0: तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा सुअर जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो वो वाला पालना चाहिए। ठीक है, जैसे विदेशी नस्ल सुअर आते हमारे यहाँ, सुअर करते करते एक बच्चा देते 4, 6, 8, 10, विदेशी सुअर बन करके 20, 22, 25 तक दे देते, समय समय पे 18 से 25, 20 के बीच में, मतलब 22 से 24 तक मिल जाते। तो कहें मतलब ये है कि वो खर साइज बड़ा होते
1: जी
0: तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा थे, मांस के क्वालिटी भी उखर ज़्यादा रहते, क्वांटिटी ज़्यादा रहते। और
1: जी
0: हमारे यहाँ का छोटे सुअर थे देसी सुअर, तो इखर मांस ज़्यादा नहीं रहे। तो
1: जी
0: कहने का मतलब यह है कि आप विदेश जब जब फार्मिंग करत हो सुअर के और आय के स्रोत बनात हो, तो ये मैं अच्छा नस्ल के सुअर पालना चाहिए। जैसे हो गए आपके हेम्पशायर हो गए, न्यूयॉर्क व्हाइट शायर बोलते ला, वो पालना चाहिए। ड्यूरॉक आते,
1: अच्छा
0: ये बड़े बड़े नस्ल के हैं, इनला पालना चाहिए। कृष्णा करके, ब्लैक कृष्णा करके पाले हैं, जबलपुर में बने हैं सुअर के, वो बने हैं आपके नस्ल बनाए हैं जो अधिक उत्पादन करते, अधिक मांस देते।
1: जी
0: ठीक है, तो
1: जी
0: जद का उत्पादन अधिक हो ही और जद के मांस मिली उसके पैसा मिली,
1: जी
0: तो मैं किसान वहां से कहूँ कि अच्छे नस्ल के सुअर पालो और समय समय में टीकाकरण करवाओ और उखर अच्छे से देखभाल करो, तो आपके एक बहुत बड़े आय के स्रोत बन जाए।
1: जी बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी, संगवारी मन जरूर एकर लाभ लिही। और आज के हमर जौन विषय रही सुकर मा स्वाई फीवर बीमारी के लक्षण उपचार और एकर रोकथाम के बारे में रही। आप मन रहो डॉक्टर राम उत्तलवार जी, अतिरिक्त उप संचालक प्रभारी जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर। संगवारी हो अतेक बढ़िया जानकारी दी, एकर बार डॉक्टर साहब ला और आप मन ला धन्यवाद। जय जोहार।
0: जय जोहार।
2: तो किसान भाई हो, अभी सुने हन सुअर मन मा स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण उपचार रोकथाम उपाय। विशेषज्ञ रहे डॉक्टर राम उत्तलवार जी, अतिरिक्त उप संचालक जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर। कार्यक्रम के संचालन करें हमार नंदू भैया। अब आवा सुनथन ए संदेश मनला।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ,
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।

0: बच्चे?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: तल्लेवा भाई, अब बहुत हो गए भेंट वार्ता और संदेश, अब कुछ गीत हो जाए। तो सुघर गीत लसुनाथन जौनला अपन स्वर से सजाए हैं चतुर राम साहू और साथी संगवारी मन।

ते दिन कैसे ग करबे किसान, एला बहुत बढ़िया ढंग से अपन गीत के माध्यम से बताइन है पानी के महत्ता ला चतुर राम साहू और ओकर संगवारी मन। अब चलत हन मौसम कति, तो भाई मौसम देखे हन अभी थोकन बढ़िया बादल कस दिखे लगे। तो 29 जून मतलब कल से लेके 3 जून तक मौसम विभाग के बताया है कि भाई बादल पानी की संभावना है। आज के अधिकतम तापमान दर्ज करी गई 43.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही से

28.6 डिग्री सेल्सियस। तो किसान भाई हो, कुछ साग सब्जी के आप मतलब रेट बता देते हैं, जैसे कोहड़ा है 600 ले 800, कुंदरू है 1400 ले 1600, रमकेरिया 1100 ले 1300, कटहल 2500 ले 2800, मुरई 1200 ले 1400, प्याज 1300 ले 1500, आलू 1200 से 1400। ये रही कुछ खास साग सब्जी के मंडी भाव। तदेव विदा कार्यक्रम ले जीतू भाईला चलथन, राम राम, जय जोहार। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिट्ठी मिली में। प्रस्तुति है मोनाली ठाकरे और महावीर बरगाह की।

0: चिट्ठी मिली सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोनाली ठाकरे
1: और महावीर बरगाह का नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज हम फिर से हाजिर हैं आपका प्रिय पसंदीदा कार्यक्रम लेके चिट्ठी मिली। इसमें हम पढ़ते हैं आपके स्नेह से भरे पत्र, जो हमें आपके प्यार भरे शब्दों से भरे होते हैं और जो हमें देते हैं हौसला और अच्छा करने का और एक नई उमंग भी देता है।
1: बिल्कुल, चाशनी से डूबे हुए उनके चिट्ठियां रहते हैं हमारे श्रोताओं के
0: जी।
1: अल्फाज में छुपे जज्बातों का पैगाम लाई है, दिल से निकली हर चिट्ठी ये खास साम लाई है। रेडियो की इस प्यारी महफिल में आपका दिल से स्वागत है। चिट्ठी मिली फिर से मोहब्बत और अपनेपन का सौगात लाई है।
0: अरे वाह महावीर जी, आपने जी हाँ। तो बड़ी खूबसूरत पंक्तियां लिखी है।
1: जी हाँ मोनाली जी, ये हमारे श्रोताओं का ही असर है कि उनके पत्र इतने प्यारे प्यारे रहते हैं कि कुछ न कुछ शब्द निकल आते हैं, तो शुरू करते हैं।
0: जी बिल्कुल, लेते हैं पहला पत्र जो आया है बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं पूरा मखीजा कुटुंब हमें लिख रहा है।
1: अच्छा, क्या लिखते हैं
0: जी? ये लिखते हैं कि 23 मई का अमराई कार्यक्रम इन्हें काफी अच्छा लगा, सभी गीत बहुत ही अच्छे लगे। साथ ही 24 मई का रजनीगंधा कार्यक्रम वर्षा जी की प्रस्तुति में काफी अच्छा लगा। 25 मई का तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम जिसकी प्रस्तुति अंशुल गुलकरी की थी पसंद कर रहे हैं। साथ ही आपकी पसंद पुष्पा साव जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: और 27 मई का हेलो आपकी पसंद संज्ञा टंडन जी की प्रस्तुति में, जिसमें उन्होंने रेडियो के भूत वर्तमान और भविष्य पर श्रोताओं से बातें साझा की, वो इन्हें काफी पसंद आई है। ये सारे ही कार्यक्रम सुनते हैं और सारे कार्यक्रम पसंद भी कर रहे हैं।
1: तो इन श्रोताओं को हम चिट्ठी लिखने के लिए धन्यवाद दे देते हैं।
0: बिल्कुल,
2: ये पत्र आया है संबलपुर बाजार चौक से जसवंत कुमार साहू, संतोषी रानी साहू, मास्टर दिव्यांश सत्यम साहू और अंकुश साहू का। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी के सभी उद्घोषक साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, और 24 मई दिन रविवार को प्रसारित सेहत की बात डॉक्टर के साथ में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी और ये जानकारी सारगर्भित लगी। सफल प्रस्तुति के लिए बधाई देते हैं। साथ ही हेलो आपकी पसंद के लिए संज्ञा टंडन जी को बधाई भेजते हैं और थोड़ी सी शिकायत भी भेजते हैं कि बातचीत अच्छी लगी मगर गीतों में साउंड गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, कृपया इस ओर ध्यान दें। पहले तो पत्र लिखने के लिए और कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद दे दें इन्हें, और इन्होंने जो ध्वनि गुणवत्ता पर हमारा ध्यान दिलाया है तो हम अपने इंजीनियरिंग अनुभाग से जरूर संपर्क करेंगे।
0: जी बिल्कुल, तो बढ़ते हैं अगले पत्र की तरफ जो आया है नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, पुष्पांजलि और जीत वर्मा जी लिखते हैं 24 मई को आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक और आवास के धनी श्री श्याम वर्मा जी से दीपक हटवार जी की बातचीत सुनने को मिली, इन्हें काफी अच्छी लगी। सफल प्रस्तुति के लिए या आकाश

0: आकाशवाणी को धन्यवाद दे रहे हैं। आपके इन प्यारे शब्दों के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र मैं पढ़ रहा हूँ
0: जी।
1: भेजने वाले साथी हैं दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा यदु, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु। इन्हें 24 मई के आप मन के गीत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, श्रवण भैया को बधाई दे रहे हैं। साथ ही लिखते हैं कि 25 मई का आज सुबह और आपकी पसंद पुष्पा साव दीदी को बधाई। 25 मई को ही तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम के लिए अंशुल गुलगरी भैया को बधाई दे रहे हैं। साथ ही 27 मई के लिए हेलो आपकी पसंद के लिए प्यारी बहन संज्ञा टंडन जी को बधाई, ऐसा ये लिखते हैं। साथ ही कुछ हिदायत भी दे रहे हैं कि इस समय नवतपा चल रहा है, सुबह से ही सूर्य देव अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देते हैं। हमें इस प्रकोप से छोटे छोटे बच्चों सहित हमारे बुजुर्गों को भी और खासकर स्वयं का भी ध्यान रखना है। शीतल पे खरबूजा तरबूजा ककड़ी का सेवन करते रहें, धूप में निकलने ना दें। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है, हम उम्मीद कर रहे हैं आपके ये निवेदन आपकी बातें हमारे बाकी साथी भी सुन रहे हैं, अमल भी करेंगे। पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पत्र कौन सा है?
0: अगला पत्र आया है नानघाट कातल बोर्ड से। भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत जी लिखते हैं, 21 मई के हेलो किसान वाणी में शिल्पा कौशिक से मंगू भैया की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। हरी खाद बनाने की जानकारी प्राप्त हुई, इसके लिए दिल से आकाशवाणी को बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही 21 मई का चिट्ठी मिली बहुत पसंद कर रहे हैं, मोनाली और सुनील चिपड़े जी को बधाइयां दे रहे हैं। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसकी रेडियो रिपोर्ट 23 मई को प्रसारित हुई, वो इन्हें काफी अच्छी लगी। स्वर उत्सव के गौरवमय प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी बिलासपुर को बहुत बहुत बधाइयां भी दे रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र है मोनाली जी, हमारे नियमित श्रोता है चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से। इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे जी का
0: जी।
1: ये 9 तारीख रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती पर जानकारी, 10 तारीख पर मदर्स डे पर जानकारी, 14 तारीख पर वट अमावस्या व्रतवारम पर जानकारी, 15 तारीख पर विश्व परिवार दिवस की जानकारी, 17 तारीख पर विश्व दूर संचार दिवस की जानकारी, 22 तारीख पर राजा राम मोहन राय जयंती पर जानकारी और 27 तारीख पर पंडित जवाहरलाल नेहरू तिथि पर जानकारी, अत्यंत महत्वपूर्ण, काफी रोचक और शिक्षाप्रद लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें, ईमेल भेजते रहें, हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: तो चलिए बढ़ते हैं अगले पत्र की तरफ।
1: जी हाँ मोनाली जी, अगला पत्र है हमारे नियमित श्रोता का है। ये है भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु। ये पूरे सप्ताह भर के कार्यक्रम की समीक्षा लिख भेजे हैं और जिसमें इन्होंने पहले लिखा है कि मोनाली ठाकरे और सुनील चिपड़े जी द्वारा प्रस्तुत चिट्ठी मिली बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत पेशकश के लिए बधाई भेजते हैं। तो आप दोनों स्वीकार करिए। साथ ही 22 मई को खुशबू द्वारा पेश किया गया रजनीगंधा बेहद पसंद आया, उन्होंने संगीतकार राम लक्ष्मण जी पर केंद्रित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 24 मई को ग्राम सभा भी अच्छा लगा, सरवन भैया को बधाई भेज रहे हैं। 24 मई को वर्षा त्रिपाठी दी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा इन्हें अच्छा लगा। साथ ही 25 मई को पुष्पा साव द्वारा पेश किया गया यादों के झरोखे से कार्यक्रम को सराहा है, जिसमें अभिनेता सुनील दत्त जी पर केंद्रित उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अच्छी पेशकश के लिए पुष्पा जी को बधाई प्रेषित करते हैं। 27 मई को संज्ञा टंडन जी द्वारा प्रस्तुत हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, शानदार पेशकश के लिए संज्ञा दीदी को बधाई लिखते हैं। साथ ही 27 मई को मदन पांडे जी द्वारा रजनीगंधा की प्रस्तुति पर भी इन्होंने अपनी समीक्षा लिख भेजी है और सफल प्रस्तुति के लिए बधाई भेजते हैं। 28 मई को अंशुल गुलकरी जी द्वारा प्रस्तुत सदाबहार नगमे और माटी के स्वर कार्यक्रम बेहद पसंद आए, खूबसूरत प्रस्तुति के लिए गुलकरी जी को ढेरों बधाइयां। तो मोनाली जी, हम इन्हें ढेरों धन्यवाद और शुभकामनाएं दे देते हैं पत्र लिखने के लिए।
0: बिल्कुल,
1: अगला पत्र मैं पढ़ता हूँ मोनाली जी। ये है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा हाल मुकाम पेंड्रा रोड से, लिखते हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। सब प्रेम नमस्ते। नमस्कार, आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित प्रायः सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं, हर वर्ग के श्रोताओं के लिए लाभदायक, उपयोगी, ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर होते हैं। साथ ही आगे लिखते हैं कि इन सभी उत्कृष्ट कार्यक्रमों की सफलता के पीछे आकाशवाणी बिलासपुर के प्रस्तुतताओं, उद्घोषकों, निर्माताओं, तकनीक विशेषज्ञों और समस्त सहयोगी साथियों का अथक परिश्रम निहित है। तो हम श्रोताओं को बता दें कि इसमें एक और चीज जोड़ दें जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, आप श्रोताओं के सुझाव, क्योंकि हम जितने भी कार्यक्रम बनाते हैं या प्रयास करते हैं तो यही कोशिश रहती है कि आपके सुझावों के अनुरूप ही हम कार्यक्रम बना सकते हैं। बहरहाल इन्हें हम धन्यवाद दे दें इतने सुंदर समीक्षा के लिए और पत्र भेजने के लिए।
0: बढ़ते हैं अगले पत्र की तरफ।
1: जी हाँ,
0: जो आया है देवरी भाटापारा से। गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेशराम मिश्री, मायाराम रजक, पुनेश्वर फानेश्वर, मुकेश कुमार, कुमारी हाव्या, कुमारी टानिया रजक, ये लिखते हैं कि आकाशवाणी बिलासपुर के सभी कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं। आगे लिखते हैं कि 25 मई

0: प्रसारित तुहर घोट हमर गीत कार्यक्रम जिसकी प्रस्तुति अंशुल गुलकरी जी की थी वो काफी पसंद कर रहे हैं और आकाशवाणी बिलासपुर को ढेर सारी बधाइयां भी दे रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र आया है, सचित्र वर्णन रहता है हर बार की तरह, और इस बार का संदेश है धूम्रपान निषेध।
0: अरे वाह,
1: साथ ही बाल सुरक्षा की बात कह रहे हैं। भेजने वाले साथी हैं तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, छन्नूलाल श्रीवास, सुशील देवांगन, एसएन प्रजापति। साथ ही आगे लिखते हैं, 24 मई को ग्राम सभा में आप मन के गीत सरवन भैया की प्रस्तुति के लिए बधाई, 25 मई तुहर गोठ हमर गीत अंशुल गुलकरी जी को बधाई, आपकी पसंद पुष्पा साव का बेहतरीन प्रसारण इसके लिए बधाई, 26 मई सदाबहार नग में प्रस्तुति शांतनु कपूर जी को बधाई, 27 मई हेलो आपकी पसंद संज्ञा टंडन जी को बधाई, 28 मई माटी के स्वर आपकी पसंद अंशुल गुलकरी जी को बधाई। तो इन सभी श्रोताओं को कार्यक्रम सुनने के लिए और ईमेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: महावीर जी, अगला पत्र आया है सिंगारबाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल, किशन, सोनम और मानी पटेल जी का। ये लिखते हैं कि वैसे तो शरीर का प्रत्येक अंग अपना एक विशेष महत्व रखता है,
1: जी हाँ।
0: लेकिन कुछ बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उसकी उचित देखभाल करना भी आवश्यक होता है। सो इसी क्रम में 23 मई का डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम जो सुबह 8:30 बजे प्रसारित होता है, इसमें कान के रोग के लक्षण एवं निदान पर डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी बातचीत की। साथ ही ये लिखते हैं कि 24 मई का किसानवाणी कार्यक्रम जिसमें छत्तीसगढ़ी गीतों पर आधारित माटी के स्वर सुनने को मिला, काफी अच्छा लगा। साथ ही 25 मई का तुहर घोट हमर गीत कार्यक्रम, भूया की बोली कार्यक्रम इन्हें काफी पसंद आया है। साथ ही 27 मई को प्रसारित हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम भी इन्हें बेहद रोचक और कर्णप्रिय लगा, जिसकी सफल प्रस्तुति के लिए यह आकाशवाणी बिलासपुर को सहृदय बधाइयां भी दे रहे हैं। आपके इन प्यारे शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला पत्र लेते हैं।
1: अगला मेल आया है इंदिरा चौक तखतपुर से। भेजने वाले साथी हैं मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल मानस, चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा। लिखते हैं कि 21 मई को प्री मोनाली ठाकरे दीदी जी और हमारे प्री सुनील चिपड़े भैया जी द्वारा प्रस्तुत चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, लाजवाब लगा। साथ ही 22 मई को खुशबू जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम रजनीगंधा संगीतकार राम लक्ष्मण जी पर केंद्रित था, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बधाई। आरती जी द्वारा प्रस्तुत 23 मई को ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम सुना सराहनीय लगा, इसके लिए बधाई। 24 मई का रजनीगंधा कार्यक्रम भी सुना, मन भावन लगा। 25 मई के कार्यक्रम के लिए रत्ना दीदी को बधाई प्रेषित कर रहे हैं। और 27 मई को हमारे प्रिय मदन पांडे भैया जी द्वारा प्रस्तुत ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम भी मस्त लगा, इसके लिए बधाई। तो हम श्रोता मिश्री लाल विश्वकर्मा जी को और उनके परिवार को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहिए और समीक्षा भी लिखते रहिए।
2: अगला पत्र कौन सा है?
0: अगला पत्र आया है लेवाई से। गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास और रानी मानिकपुरी जी लिखते हैं कि आजकल हर जगह पर गर्मी है और सिर्फ गर्मी का कहर चल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें अपना ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो ज्यादा बाहर ना निकले और जरूरी है कि हम अपनी सावधानी बरते, नींबू पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अपना सिर ढक्के रखे, जब भी आप बाहर जाए अपनी पानी की बोतल साथ में लेके चले, ये सारी सावधानियां लेनी चाहिए, ये इन्होंने इनके मेल में लिखा है। तो हम श्रोताओं से भी निवेदन करना चाहेंगे कि ये सारी बातें अपने ध्यान में रखें और गर्मी से बचे।
1: जी हाँ, हमारे श्रोता ने जैसा कहा है कि गर्मी चल रही है, तो चिट्ठियों की बौछार या फुहारे जो भी कहें वो हमारे तक लगातार भेजते रहते हैं। तो अगला पत्र कौन सा है?
0: जी, साथ ही महावीर जी इन्होंने कहा है कि ईमेल करें गीत सुने में इनका पत्र शामिल नहीं हो पा रहा है, तो शायद बहुत सारे पत्र, बहुत सारे ईमेल आते हैं तो आपका पत्र छूट गया होगा। हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप पत्र और ईमेल भेजते रहिए, आपका पत्र हम जरूर शामिल करेंगे।
1: जी हाँ, इन्होंने जानना चाहे कि क्या ईमेल करें गीत सुने का समय बदला है या ईमेल आईडी बदला है। तो कुछ भी नहीं बदला है और न ही आप श्रोताओं का प्यार बदला है।
0: जी, तो महावीर जी ये अगला पत्र लेते हैं जो आया है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी लिखते हैं कि आकाशवाणी बिलासपुर जब भी अपने कार्यक्रम लेके आता है हम अपने आप में खो जाते हैं। उद्घोषकों की सुमधुर आवाज वाकई में हमको दीवाना कर देती है। बहुत ही प्यारे शब्द इन्होंने हमारे सभी उद्घोषक साथियों के लिए कहे हैं।
1: जी हाँ,
0: इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। ये आगे लिखते हैं कि आपकी पसंद कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने माटी के स्वर, अमराई, गुंजेश्वर गांव के, ये सारे कार्यक्रम ये सुनते हैं और ये सुनकर इनका दिल आनंदित हो जाता है, तन मन धन्य हो जाता है।
1: क्या so, बात है।
0: इसी क्रम में तुहर गोट हमर गीत अंशुल गुलकरी जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं, लाजवाब मनमोहक अंदाज में जो प्रस्तुति की उसके लिए बधाइयां दे रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: साथ ही 25 तारीख का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम भी पसंद कर रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। ये लिखते

0: की सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, मनमोहक सदाबहार समागम और शानदार जानदार प्रस्तुति के लिए समस्त आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे प्यारे शब्दों का वर्षाव करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।
1: आज के पर्व विशेष ईद उल अजहा की मुबारकबाद भेज रहे हैं सभी साथियों को। और भेजने वाले साथी हैं बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान। साथ ही 22 मई को प्रस्तुत आज सुबह इन्हें अच्छा लगा, 24 मई को आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर श्याम जी के साथ दीपक हटवार की बातचीत भी इन्हें बहुत अच्छी लगी, 25 मई को रजनीगंधा सुनील दत्त जी के करियर पर केंद्रित था ये अच्छा लगा, और ट्रैफिक अपडेट्स को भी ये बेहद पसंद करते हैं। सभी सुंदर प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं, तो हम इन्हें धन्यवाद दे देते हैं। आकाशवाणी बिलासपुर और सभी श्रोता परिवार को ईद मुबारक। रविवार को प्रसारित माटी के स्वर कार्यक्रम किसानवाणी में आप मन के गीत, सोमवार का तुहर गोठ हमर गीत आपकी पसंद, शाम की सभा में ईमेल करें गीत सुने, बुधवार को हेलो आपकी पसंद, शाम को युवा जगत कार्यक्रम में सवाल जवाब, और गुरुवार सुबह अंशुल गुलकरी द्वारा प्रस्तुत माटी के स्वर। सभी कार्यक्रम को बेहद सराहा है, सराहनी और यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई प्रेषित कर रहे हैं। और लिखने वाले हमारे साथी हैं दतरंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा
2: जी। आपके टोकरी में और भी पत्र और ईमेल दिख रहे हैं, तो कौन श्रोता है हमारे
0: जी? ये है मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू।
2: क्या लिखते हैं?
0: ये लिखते हैं कि हमें चिट्ठी मिली, ईमेल करेगी सुने ग्राम सभा, युवा जगत, इसके अलावा माटी के स्वर और फोन इन कार्यक्रम सर्वाधिक पसंद आते हैं। ये सारे कार्यक्रम सुनकर हमारा तन मन उत्साहित हो जाता है और हमें प्रेरणा देने का कार्य करता है। सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं
2: जी। हाँ,
0: आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र है अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा का। बकरीद पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही लिख रहे हैं कि 26 मई को ईमेल करें गीत सुने में श्रोताओं के मन माफिक ईमेल शामिल हुए, अच्छे अच्छे गीत भी सुनवाए गए, सुनने के लिए धन्यवाद। और साथ ही 28 मई को आज सुबह और सदाबहार नगमे कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगा, सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को बधाई प्रेषित कर रहे हैं। माखन वर्मा और उनके परिवार को हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं इस पत्र के लिए
0: जी। बिल्कुल।
1: अगला पत्र है रसेड़ा कलतरा से भेजने वाले श्रोता हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीकेश कुमार साहू। ये लिखते हैं कि 21 मई का चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, सफल प्रस्तुति के लिए सुनील चिपड़े और मोनाली मैडम को बहुत बहुत बधाई भेज रहे हैं। साथ ही 22 मई को ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम पसंद आया, खुशबू मैडम को बधाई दे रहे हैं। 27 मई का हेलो आपकी पसंद, इसके लिए संज्ञा दीदी को बधाई भेज रहे हैं। 27 मई का ही ईमेल करें गीत सुने के लिए मदन पांडे जी को बधाई भेज रहे हैं। और 28 मई आज सुबह कार्यक्रम और माटी के स्वर पसंद आया, इसके लिए अंशुल गुलकरी जी को भी बहुत बहुत बधाई प्रेषित कर रहे हैं, तो इन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहिए, समीक्षा भी भेजते रहिए और पत्र ईमेल भी भेजते रहिए, हमें इंतजार रहता है।
0: बिल्कुल। तो महावीर जी, अब वक्त हो चुका है हमारे श्रोताओं से अलविदा लेने का
2: जी। हाँ, लेकिन जाने से पहले हम पता हमारे श्रोताओं को साझा कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49, नूतन कॉलोनी, आकाशवाणी बिलासपुर, पिन कोड है 495006।
0: और ईमेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है पत्र ईमेल bsp@gmail.com। तो हमें इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे पत्रों का और मेल का
2: जी। हाँ, तो अब कार्यक्रम से अनुमति दें
0: और स्वीकार करें मोनाली
2: और महावीर बरगाह का नमस्कार।

0: कार्यक्रम चिट्ठी मिली, अभी आप सुन रहे थे प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे और महावीर बरगाह की।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला,

0: और हंसी का हवा महल। 22 की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा।
4: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर,
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:20 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत में हम पेश कर रहे हैं राग दुर्गा।

राग दुर्गा अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज 6वें दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध

विभिन्न ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में अब्दुल्ला फिल्म का गाना सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और एनेट की आवाजों में सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहां वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा।

उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता, सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

साथ जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद कर लिखे थे रंगीत मोशन।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दर्द दिल का चिराग गोया बड़ी मुश्किल से जलाया है, आज फिर बेताबियों में खुद को घिरा पाया है। मोहब्बत के नशे मन में उनके कदमों के निशान ढूंढते हैं, फूलों में ओस की नाजुकी नगमों में तराना ढूंढते हैं। दिल के आंगन में मेरे चुपके से आता है कौन, मेरा सब्र हर घड़ी यूं आजमाता है कौन।

जब जब पुकारा है, बात क्या चाहिए, सब कुछ मोहब्बत पे वारा है। ये ख्वाब नहीं अफसाना है, हकीकत है, दो घड़ी मिल बैठें, चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये खुशबुए नसीम, ये सितारों की रोशनी, ये शबनम के कतरे, ये फूलों की बहारें हैं फिजाओं में, ये नज़ारे जैसे चनार के पत्तों पे लिखी मोहब्बत की कोई इबारत हो। क्या जानिए क्या दिल का हाल होता है, बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से।
1: न झटको जुल्फ से पानी,

ये कश्मकश, ये उलझने बहुत मुश्किल है। ये दुनिया की रवायतें बहुत मुश्किल है। दिल का मामला है, हरफों में कब बयां होता है। ये जिगर का तीर है, मुश्किल से निकलेगा जहां भी साथ निकलेगी, अगर ये दिल से निकलेगा।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी

अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।